0: କେବଳ ପୂଜାପାଠ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଓ କରୁଣା ରଖିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା, କହିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। यह सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाईयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं।

0: मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले चार दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माही में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयना सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमरीकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइट्स और टिम पोइट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले कलु आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी जयपुर पूर्व आकाश साहसर नुआ ऊर्जा नहीं छुट्टी आसे सकाळ एवं सही ऊर्जा को बांटुवा प्रभु दिनराजों आशीर्वाद ने दिन की मंगलमय हुए तेज आसतु ना से ही परमेश्वर चरणार बिंदरे निजर अर्घ्य अर्पण कर आरंभ करवा आज सका भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना प्रथम भेटी देउछु संस्कृत वंदना पुरातन रचनारो शिल्पी हेले सुनंदा पटनायक।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूं, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

0: बेस तुम्हें तो जानी गलोनी समय मूल्य केते तेबे मु गोटिए छोटिया कहानी कहुची सेथिरु ठीक समय रे काम न कले केते हैरान हेबो जानी पारिबो
1: आमुको से कहानी टी कुहो बापा
0: बेस तेबे सुण कोळिया सकाळे अति सुंदर परिवेश रे झिटिकाटिए मन आनंद रे एणे तेणे डेई गीत गाउ थाए से देखिला पिंपुड़ी माने एभली पागरे आनंद नकरी कुआडे सबु धाड़ी हुई जाली चंती से मानुको देखी कहिला पिंपुड़ी भाई माने आसो एभली पागरे नाचिबा गाइबा आनंद।

आकाशवाणी जयपुर शुणतु कार्यक्रम संपर्क एक सूचना आज अपराह पांचटा बाजि तीस मिनिट्रे प्रचार करिबु लाइव फोन इन कार्यक्रम रेडियो के बाजारु एथिराजी विषय रही आवास योजना केन्तार मिलसी ए संपर्क आपण माने अपराह पांचटा बाजि तीस मिनिट्रु संध्या छटा पर्यंत सीधा सड़क फोन माध्यमरे आम सहित जोड़ी हुई आपणकर प्रश्न रखिपारे आम जोगाजोग नंबर टी हेला 06854230690 068542300 आवास योजना केन्तार मिलसी सूचनाटी एथिकरे शेष हेला। प्रिय श्रोताबंधुमानंकु एठी मने पकाई दउछु आज अपराह्न पांचटारे शुणिबे युवश्रोतांक पई कार्यक्रम युववाणी एथिरे जानिबा कथारे रहिछि आम संविधान आम विधानसभा संपर्करे प्रायोजित कार्यक्रम एंटरप्राइजेस इक्युबेशन एई प्रोग्रामटी आपण माने शुणिपारिबे सकाळ 8:30 एवं संध्या 6:00 रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। संध्या 6:55 जनजीवन संवाद एवं राति 7:25 शुणिबे जिल्ला हालचाल रे रायगढ़ा जिल्ला संपर्करे रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। संध्या 6:10 प्रचार करिबो कृषि और कृषक कार्यक्रम ये थिला आज आम केन्द्ररु प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्करे किछि आकाशवाणी जयपुर समय वर्तमान सकाळ 8:00 बाजिबाकु जाउछि। आमर परवर्ती कार्यक्रम प्रथमे हिंदी रे समाचार प्रभात परे 8:15 शुणिबे

0: ইংরেজির মর্নিং নিউজ এবং 8:30 শুনিবে এন্টারপ্রাইজেস ইকুবেশন প্রোগ্রাম। তবে প্রথমে শুনন্তু সমাচার প্রভাত রিলে করুছু আকাশবাণী দিল্লির।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में डीआरडीओ का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
2: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
3: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
3: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
4: I would like to say that the outcome document.
5: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
4: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश

0: समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
5: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
6: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।

0: टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रैबाकिना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रैबाकिना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रैबाकिना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बेटून कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ते के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्ययोजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद, जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी, कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रैबाकिना ने

प्रथमेश्वर पिथिले जितेन्द्रनाथ पटनायक गीत रचना अशोक मिश्र एथर शिल्पी हेले विश्वकल्याणी महंती।

मैफ्री 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ट्ज जोगे एफएम रे सुनी परुचंती 103.6 मेगाहर्ट्ज जोगे एहा व्यतीत मोबाइल फोन रो न्यूज ऑन एआईआर आप एवं वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म माध्यम रे मध्य आपण माने आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रो समस्त कार्यक्रम गुड़िक सुनी परुचंती। वर्तमान आरंभ करुछु सुगम संगीत।

0: सन साइन?
1: नो वे, बिल्कुल भी दे हेवनी। वर्तमान गोटे जिनस ही आपन को दे हेबो ता होचे हमरो फोन नंबर।
0: यस 0685423060।
1: ए नंबर टी खोला रहुची प्रति शनिवार सकाळ 10:30 रे। तो प्रति शनिवार फोन लगांतो हमको पसंद करंतो, अनुरोध करंतो हिंदी चलचित्र गीत।
2: बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो।
1: नमस्कार, मु दमयंती बैकार। आजिर मो पसंद कार्यक्रम परिसर रे अछि खास आपण को सहित कथा हवा पई और आपण को पसंद रो हिंदी चलचित्र गीत सुनेवा पई। तो जीवा फोन इन प्लीज कार्यक्रम हेलो मो पसंद आरंभ करिवा। हेलो मो पसंद।
3: मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते
3: मैडम, एक साल के बाद आज आपके कार्यक्रम।
1: अच्छा, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: इंदौर से अनिल कौशल।
1: क्या कर रहे थे इन एक साल में अनिल जी?
3: एक साल में बस बैंक के काम में बिजी थे। आज वैसे भी बस बैंक की जाने की तैयारी कर रहे थे।
1: अच्छा,
3: हमने सोचा कि बैंक पहुँचेंगे तो कार्यक्रम में फोन का समय समाप्त हो जाएगा, तो निकलने के पहले फोन करने का भी लग जाएगा। तो ठीक है, तो फोन लग गया।
1: ठीक है, कैसे हैं आप?
3: बस बहुत अच्छे।
1: आप फोन नहीं लगा रहे थे लेकिन इस प्रोग्राम को सुन रहे थे कि नहीं?
3: प्रोग्राम तो बराबर सुन रहे थे, प्रोग्राम बराबर सुन रहे थे।
1: अरे वाह,
3: आप तो खुद कहते हैं ना थोड़े थोड़े घंटे से फोन लगाओ।
1: हाँ जी,
3: कि ऐसी बात हो गई कि वो टाइम ही नहीं मिला है एक बार तक फोन लगाने। तो छूट गई, आज लग गया खुद तो बात हो गई।
1: हाँ जी, तो बोल दीजिए आपका पसंदीदा गाना, क्या गाना सुनेंगे?
3: नमक हलाल फिल्म से जवान जाने मन हसीन दिल रुबा, ये वाला सुनवा दीजिए।
1: जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवान

0: चामुंडा की?
1: जी जी।
0: हाँ, कितना बड़ा मंदिर होगा?
1: हाँ, बहुत पुराना मंदिर है। गणेश उत्सव की तो बढ़िया धूम है यहाँ पर दीदी, सब चारों तरफ दुकान है, सजी हुई है और बहुत जगह पंडाल लगे हुए हैं और बस आगमन की तैयारी है बप्पा की। हाँ, और यहाँ पर कुमार गली है हमारे यहाँ पास में, बस स्टैंड के पास में
0: जी,
1: तो वहाँ पर भी मूर्तियाँ बनती है।
0: नहीं, मूर्ति जो बनता है तो जो रंग उधर लगता है, केमिकल रंग, जो पानी गंदा हो जाता है, ये सब लोग जानते हैं, इसके लिए कुछ नेचुरल रंग?
1: ये तो ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में।
0: बोलिए, आपका पसंदीदा गाना क्या गाना सुनेंगे?
1: गणेश चतुर्थी है, 14 सितंबर से आगमन है।
0: हाँ,
1: तो उसी की सबको पहले तो शुभकामना देता हूँ, सभी श्रोताओं को, पूरे देश भर के श्रोताओं को, और गणपति का गाना सुनवा दीजिए, ये कालचक्र का, गणपति पत्ता मोतिया जिसने तेरा नाम लिया, सुरेश वाजपेयी की आवाज में है ये।
0: धन्यवाद आपको राजू जी,
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, राजीव अग्रवाल बोल रहे हैं, राजाराम नगर देवास।
1: राजाराम नगर देवास,
0: हाँ, ये माँ चामुंडा का शहर है, मतलब मंदिर है, माँ चामुंडा का
1: देवी मंदिर है।

0: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंचलिया।
1: सत्येंद्र कुमार चंचलिया जी कैसे हो आप?
0: जी मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा आकाशवाणी जयपुर परिवार अच्छी तरीके से होगा।
1: एकदम सही सलामत है सब लोग,
0: यही हमारी शुभकामनाएं हैं।
1: हाँ।
0: कि हमारे सभी आकाशवाणी केंद्र जहाँ से हम जुड़ते हैं वहाँ भी, जहाँ नहीं जुड़ पाते हैं
1: हाँ।
0: वो भी अच्छा। वहाँ भी जो भी व्यक्ति हमारे कार्यरत हैं भाई बहन
1: हाँ।
0: वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रहें, मस्त रहें, मद मस्त रहें।
1: क्या बात है, कितना सारा आशीर्वाद दे दिया आपने तो।
0: यही हम और आपके काम में आनी है और बाकी जीवन जैसे चलता ही रहता है बहन जी।
1: जिंदगी है, बढ़ेगा आगे बढ़ेगा।
0: आज हमें पुराना गीत सुनेंगे।
1: बोलिए कौन सा गाना सुनेंगे?
0: फिल्म आवारा।
1: आवारा
0: घर आया मेरे परदेसी, प्यास बुझी में अखियन की।
1: एक लाइन गाइए।
0: आपने पहचान बना ली अपनी। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरे अखियन की।
1: ऐसे थोड़ा बहुत घर में गा लेते हैं आप?
0: हमारा एक ही शौक है, रेडियो सुनना और गाने गुनगुनाना।
1: श्रीमती जी कुछ नहीं बोलते हैं?
0: श्रीमती जी तब बोलते हैं,
1: हाँ,
0: आपने बिल्कुल कहा,
1: हाँ,
0: अगर हम रात 10 बजे के बाद सुनते हैं तो। उसकी वजह भी हम बता दें आपको, स्पष्ट कर दें,
1: हाँ,
0: तो महिलाओं के ऊपर बहुत जिम्मेदार।

0: जानकारी होती है उनके पति की, बच्चों की, घर की, और घर में जो सदस्य हैं उनकी भी। तो इस हिसाब से कहने का, वो एक टीचर हैं, अभी वो 2 बजे 2:30 बजे करीब आएंगी। इसके बाद जो शाम का काम है, खाना बनेगा और पर वही चौका बर्तन, और उसके बाद थोड़ा हम लोग थोड़ा क्या 9 से 10 देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति।
1: क्या बात है।
0: बस उसके बाद फिर डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, फिर तो बिल्कुल सो जाइए। तो इसलिए हमारे कहने का आशा है कि 10 बजे के बाद हम कुछ भी नहीं सुन पाते।
1: ये बात सुनकर खुशी हो रही है कि आप इतने समझदार हो।
0: वैवाहिक जोड़े हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं कि वो एक ही धुरी के 2 पहिए हैं, और आप उसमें जितना तालमेल मिला के चलेंगे, जीवन की गाड़ी उतनी ही अच्छी चलेगी, सुखमय चलेगी, आनंदमय चलेगी, बच्चों पर सकारात्मक व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
1: क्या बात,
0: अन्यथा इसका उल्टा होता है।
1: जी जी, बहुत अच्छा। तो चलिए आपका पसंदीदा सुंदर सा गाना सुनेंगे।
0: शुक्रिया बहन जी।

0: छत्तीसगढ़ बस्तर फरद यहाँ से फागेश्वर मंडाई बोल रहा हूँ मैम।
1: फागेश्वर मंडाई जी कहाँ थे इतने दिन आप?
0: अरे सुन रहे थे मैं।
1: बात करने का मन नहीं कर रहा था
0: जी, नहीं बात करने का मन कर रहा था लेकिन मैं सोचा कि चलो थोड़ा स्टेट ले लेते हैं बोल के।
1: अच्छा थोड़ा ब्रेक ले लिया आपने
0: जी मैम।
1: ब्रेक के बाद फिर फोन कर रहे हैं आप?
0: जी जी जी जी अभी बात करने में मजा आता है मैम।
1: आपका शादी हो गया?
0: जी मैम।
1: हमें तो निमंत्रण मिला नहीं इसीलिए आपने इतना खुश हुए?
0: आप लोगों से बात करने में खुशी से रहता हूँ।
1: अच्छा बहुत अच्छा करते हैं। शादी का लड्डू आपने खा लिया है इसीलिए इतना मुस्कुरा रहे हैं ना?
0: जी नहीं मैम।
1: कैसे हैं श्रीमती जी?
0: श्रीमती जी ठीक है मैम।
1: आपका गृहस्थी ठीक ठाक चल रहा है?
0: जी मैम जी मैम।
1: हाँ तब तो अच्छा है। बोल दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे
0: मैम? राजा हिंदुस्तानी का जो फीमेल सिंगर के आवाज में है ना मैम, परदेसी वाला, उसी को सुनने हैं मैम।
1: अच्छा ठीक है चलिए सुनते हैं फागेश्वर जी।
0: जी मैम जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम कार्यक्रम में जगह दी इसलिए। हाँ, दिल से आभार मैम।
1: हाँ जी।

0: हेलो नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते,
0: मैं ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी
1: आपका गांव का नाम क्या है?
0: दीदी मेरे गांव का नाम है ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश।
1: हाँ, तो हीरापुर में अभी बारिश है ना? बारिश नहीं है
0: दीदी। हाँ, कल शाम से थोड़ा हल्की बारिश हुई है।
1: हुँ.
0: अभी दो तीन चार दिन रहेगी बारिश हमारे इधर।
1: खेती बाड़ी
0: अच्छी है दीदी, बहुत बढ़िया फसल है। सोयाबीन की फसल बोई है दीदी, मक्का और सोयाबीन।
1: अच्छा, सोयाबीन और मखाना।
0: जी
1: हाँ, तो आकाशवाणी जयपुर ओडिशा का स्टेशन से और क्या प्रोग्राम सुनते हैं आप?
0: दीदी हमें तो फोन इन कार्यक्रम पसंद है। संडे के दिन जब आपका कार्यक्रम चालू होता है दीदी, तो हम आपके कार्यक्रम को ट्यून कर लेते हैं दीदी। हमारे दिन की शुरुआत आपके कार्यक्रम से ही होती है दीदी।
1: क्या बात है, बोलिए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: दीदी आप सुना दीजिए इंसाफ फिल्म का, सोनू निगम जी अनुराधा पोडवाल जी की आवाज है। गाने के बोले तुझे प्यार इतना किए जा रहे हैं, तेरा नाम पल पल लिए जा रहे हैं।
1: क्या बात है, चलिए सुनते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कॉल रिसीव करने के लिए।
1: हाँ।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: जी ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन।
1: क्या हाल है अभी उज्जैन की?
0: जी काफी अच्छा मौसम है यहाँ पे।
1: हाँ।
0: रुक रुक के हल्की बारिश हुई है इस बार
1: जी।
0: इस हफ्ते, और अभी बादल छाए हुए हैं।
1: गणपति उत्सव के लिए कैसे तैयारी चल रहा है?
0: हाँ गणपति उत्सव के लिए बताना चाहेंगे आपको।
1: हाँ।
0: जैसे कि चौराहे हुए, हनुमान जी का मंदिर हुआ, या ऐसे कोई भी मंदिर होते हैं ना, उस पे

0: मतलब एक झांकी बनाई जाती है
1: जी
0: और वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके 10 दिन तक उसकी पूजा आराधना की जाती है।
1: क्या बात है। तो 10 दिन होता है, रात में जो मेलोडी वगैरह वगैरह होता है, कल्चरल प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइज होता है रात में, क्या होता है, क्या चलता है उधर वो कल्चरल प्रोग्राम में?
0: जी जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि भजन भी होते हैं और रात में,
1: हाँ
0: और उसके बाद में कुछ लोग साउंड भी लगाते हैं और अलग अलग तरीके से मतलब गणेश जी की आराधना वंदना करते हैं,
1: बहुत
0: और
1: अच्छा है,
0: 10 दिन तक मतलब ऐसा पूरा उत्साह बना रहता है। जी
1: क्या बात है। गणपति बाबा मौर्या अगले वर्ष तो
0: गणपति
1: जल्दी,
0: बप्पा मोरिया चाल लड्डू चोरिया। जी
1: बप्पा सबकी भला करे।
0: जी
1: जी बोलिए कौन सा गाना सुनेंगे?
0: आप सुनवा दीजिएगा गणपति बप्पा मोरिया। हाँ इसमें एक भजन है, हाँ गणपति जी का, आप ऐसा मतलब कोई भी भजन सुनवा दीजिएगा, हम पसंद आएगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, नमस्ती।
1: लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नाना खेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम।
0: कैसे हैं लोकेंद्र जी?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, महाकालेश्वर जी के आशीर्वाद से बढ़िया हैं। गणेश चतुर्थी आने वाली है, गणेश जी की
0: हाँ
1: आने का इंतजार कर रहे हैं। गणेश जी की स्थापना कब होगी?
0: हाँ अभी तो हो चुका होगा ना मंडप सब।
1: हाँ मंडप तो तैयार हो गया है, पर 14 सितंबर को स्थापना होगी गणेश जी की।
0: हाँ वो तो है।
1: हाँ जी मैडम,
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: मंडप जो शहर के अंदर जगह जगह जो स्थान है गणेश जी के, वहाँ का मंडप तैयार हो गया है।
0: जी
1: बस ये मूर्ति स्थापना जो 14 सितंबर को होगी, तो बस वो स्थापना का इंतजार कर रहे हैं। फिर 10 दिन तक यह आयोजन चलेगा।
0: हाँ गणपति बाबा
1: जी
0: की जब पूजन आता है साल में एक बार, एक सुंदर सा प्रसाद आ जाता है, मोदक।
1: हाँ, मोदक बिल्कुल मैडम।
0: हाँ घर में बनता है मोदक।
1: हाँ घर में तो मोदक नहीं बनाते हैं, पर हम बाजार से लेकर जरूर आते हैं, उनका
0: हाँ
1: ही उनको गणेश जी का मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं। और एक होता है मोतीचूर का लड्डू, ये
0: हाँ
1: सबसे ज्यादा प्रसाद में लेते हैं, तो
0: हाँ
1: यही तो प्रसाद चढ़ाते हैं। तो
0: हाँ ऐसे तो
1: आपको
0: आदमी का मन का जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो सबसे बड़ा प्रसाद है भगवान के लिए।
1: हाँ बिल्कुल मैडम
0: हाँ
1: जी,
0: हाँ
1: देखिए भगवान तो सभी जो भारत की जितने भी जनता है, जो
0: हाँ
1: उनके श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं, वो तो सभी का ध्यान रखते हैं। उनके लिए तो सब छोटा बड़ा सब बराबर है, तो आशीर्वाद मिलना चाहिए गणेश जी भगवान का।
0: जी बोलिए, आपका पसंदीदा गाना क्या गाना सुनें?
1: पसंदीदा गाना है, ये फिल्म का नाम है हमसे बढ़कर कौन। इसमें एक गाना है, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे
0: अच्छा
1: बढ़कर कौन, ऐसा गीत है,
0: हाँ हाँ
1: ऐसा गीत
0: हाँ
1: है। और हमारे उज्जैन में एक चिंतामन गणेश मंदिर भी है, प्रसिद्ध मंदिर है, पुराने इतिहास में दर्ज है, वहां के दर्शन करने से सारी चिंताएं दूर हो जाती है,
0: ऐसा विश्वास है।
1: ऐसा विश्वास है मैडम जी।
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: और चिंता हरण भगवान है वो, और वो सबकी चिंताओं को दूर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, पास में ही मंदिर है, मतलब मेरे नाना खेड़ा से 2-3 किलोमीटर दूर ही है।
0: चलिए पप्पा जी सबका मनोकामना पूर्ण करें और सबको

0: हेलो,
1: दीदी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री महाकाल। शिवा
0: बोलिए, नाम पता बोल दीजिए।
1: लोहट MP विदिशा से आपका निमिष होता मैम।
0: क्या नजारा है अभी विदिशा की?
1: मैम देखिए, गणेश उत्सव की बहुत सारी धूम है मैम,
0: हाँ,
1: और बारिश भी लगी हुई है।
0: क्या बात है, कितना मंडप होता है?
1: जी मैम, कम से कम 1,000 झांकी, 1,500 झांकी की समथिंग छोटी बड़ी मिला के हो जाती है। और
0: हाँ
1: ये ऐसा है ना, छोटे छोटे बच्चों में ज्यादा क्रेज रहता है, जगह जगह बहुत ज्यादा, और बड़े उम्र लोगों में तो रहता ही रहता है।
0: हाँ जी, तो जब विसर्जन की बारी आता है, विसर्जन होता है मूर्तियों की, तो कहाँ पर होता है?
1: हमारे यहाँ पे बेदबा तट है, तो वहाँ पे एक जानकी कुंड बना हुआ है मैम, तो उसको अभी साफ कर दिया गया है और उसमें पानी भर दिया जाता है और उसमें विसर्जन करा जाता है, और खास तौर से कच्ची मिट्टी के गणेश जी रखने की अपील पूरे भारतवर्ष में मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि जो गणेश जी बनते हैं, POP वाले जो गणेश जी रहते हैं, तो उनको चाहे आप साल भर पानी में डाले रहो, वो गलते नहीं है मैम।
0: मिट्टी में ही बनता है सब मूर्तियां।
1: जी
0: तो बोलिए, कौन सा गाना सुनेंगे शिवाजी आप?
1: मैम, एक मूवी रहेगी अग्निपथ, और उसमें एक गाना है देवासी गणेश, देवासी गणेश। धन्यवाद मैम।

0: हाँ नमस्ते दीदी,
1: नमस्ते।
0: कैसे हो?
1: नाम पता तो बोलिए, उसके बाद बात करेंगे।
0: गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र।
1: मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन लगता है आप बहुत खुश हो।
0: क्योंकि लग गया ना फोन,
1: फोन लग
0: इसलिए
1: गया,
0: बहुत
1: इसीलिए
0: खुश हूँ
1: इतना
0: मैं।
1: खुश हो।
0: हाँ
1: तो उधर का क्या मौसम है आपका गांव का?
0: अभी तो बरसात चालू हो रहा है।
1: चालू हो रहा है?
0: हाँ
1: पहले नहीं हुआ था क्या?
0: पहले थोड़ा सा होकर चलेगा, मगर गए साल से इस साल बारिश कम है।
1: जी
0: फिर भी अभी बारिश हो जाएगी, गणपति आ रही है अभी।
1: भादो चल रहा है अभी।
0: चलो
1: हाँ,
0: चलो।
1: भादो में गणपति जी आते हैं, उस सब मनाते
0: जी
1: हैं
0: जी जी
1: इधर। कितना सारा पंडाल बना हुआ है आपका गांव में?
0: बहुत से गणपति, गणेश बैठते हमारे शहर में।
1: अच्छा, सबसे पुराना वाला मंडप?
0: मंडप का उसका नाम है विद्यार्थी गणेश मंडल।
1: अच्छा,
0: वो
1: अरे वाह।
0: जगह ऐसा डेकोरेशन बनाते हैं, जो देश में क्या चल रहा है वो सीन बनाते हैं। देखा हुआ
1: इस साल कौन सा सीन बनाया है?
0: अभी इस साल वो बना रहे हैं अभी,
1: हाँ
0: नेपाल का, बाढ़ का और
1: हाँ
0: वैसे कुछ देश के बारे में बना रहे हो ना।
1: बहुत अच्छा। बोलिए कौन सा गाना सुनेंगे? गंगाधर जी।
0: गाना देखो, हमसे बढ़कर कौन, फिल्म का नाम, और उसमें का देवा ओ देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, ये गाना सुनना है जी,
1: जी
0: टाइटल
1: जी
0: सॉन्ग।
1: जी चलिए सुनते हैं।
0: नाम लेता हूँ मित्रों का,
1: जी जी जी
0: हमारे गौतम जी, रावल, तुकाराम जाधव जी, सुनील झा, दिलीप पाउजा, और धर्मवीर, और भगवान सिंह जी, और हमारे केसरी सिंह राजपूत जी, राजेंद्र गंगवार जी, तनुश्री सातारा से, उदय लाल टेलर जी। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: तो क्या हाल है आपका?
1: हम परासिया से लगभग 4 किलोमीटर इंटीरियर में रहते हैं मैडम। परासिया छिंदवाड़ा, परासिया हमारा तहसील
0: अच्छा,
1: पड़ता है।
0: छिंदवाड़ा। हाँ हाँ छिंदवाड़ा में एक आकाशवाणी है।
1: आकाशवाणी जी,
0: आकाशवाणी
1: छिंदवाड़ा है।
0: आप सुनते हैं वो स्टेशन?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कोयला कोयला कहना चाहिए उत्पादन क्षेत्र रहेगा।
0: अच्छा
1: कृषि
0: हाँ
1: प्रधान
0: हाँ
1: क्षेत्र तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पर हमारे यहाँ माइंस भी ज्यादा है कोयले की,
0: क्या बात है।
1: तो कोयले का उत्पादन यहाँ पे जाए मतलब अधिक मात्रा में होता है,
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: इसके नाम से भी छिंदवाड़ा ज्यादा फेमस है।
0: बहुत अच्छा है। तो बोलिए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: गाना सुनवा दीजिए मेरे को, वो कौन सी फिल्म का, लग जा गले फिर ये मुलाकात हो ना हो।
0: क्या बात है।
1: जी जी
0: हाँ
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार,
0: हम साबिर परवाना बोल रहे हैं, नहर मंटोला जिला मधुबनी बिहार से।
1: कैसे हैं साबिर जी आप?
0: बहुत बढ़िया दीदी, आप लोग का दुआ ठीक है, आप कैसे हैं?
1: जी हम भी अच्छे हैं, मजे में हैं। और क्या बोलना चाहेंगे?
0: बस अपने ड्यूटी में है अभी।
1: अच्छा, अभी दिल्ली में हैं आप?
0: जी जी दिल्ली में है।
1: इस समय क्या मौसम है दिल्ली का?
0: रात तो बारिश हुआ है जम करके, अभी धूप खिला हुआ है लेकिन।
1: अच्छा क्या बात है।
0: जी जी
1: तो ठीक है, फिर बोलिए कौन सा गाना सुनेंगे
0: आज हमको? गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम है भाभी।
1: हाँ।
0: गाने के बोले हैं चल उड़ जा रे पंछी।
1: चलिए सुनते हैं।
0: कुछ दोस्तों का नाम ले लूं दीदी?
1: हाँ।
0: हमारे दोस्त हैं वलीउल्लाह अंसारी, शिषपाल अकेला, मनोहर लाल गांधी, पूनम कुमारी कानपुर से, रजनी सिंह चौहान जी हरदोई की, नहर मंटोला के जाहिद अली, शाहिद अली, साजिद अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली और कादिर अली को।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: नमस्कार।
2: चल

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: कैसी हो दीदी आप?
0: मैं एकदम अच्छी हूँ। बोलिए, नाम पता बोलिए।
1: धीरज व्यापारी, गुजरात से।
0: क्या हाल है गुजरात की?
1: अभी बढ़िया मौसम है यहाँ। तेजी से पवन, यानी पवन भी है और
0: ठीक है, फिर बहुत अच्छा। बोलिए, आपका पसंदीदा गाना क्या गाना सुनेंगे?
1: गाना सुनना है मेरे को क्रांति फिल्म का, कोई भी गाना हो तो चलेगा, क्रांति फिल्म का।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ହେଲୋ ମୋ ପସନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ବି ଶୁଣିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଥର ହେଲୋ ମୋ ପସନ୍ଦକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ପସନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। 0685423609। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ନମ୍ବରଟି ଖୋଲା ରହେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ସକାଳ 10:30। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।
1: ପ୍ରଚାର କଲୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଅନୁରୋଧରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲୋ ମୋ ପସନ୍ଦ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 10:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
2: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ନବୀନ ସକ୍ସେନା। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
3: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।

0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में हथियार तथा मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगी। यह उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश इसे आगामी क्षेत्रीय बैठक में अन्य खाड़ी देशों के समक्ष रखने की योजना बना रहे हैं। योजना के अंतर्गत खाड़ी में प्रवेश मार्ग पूरी तरह से ईरानी क्षेत्रीय जलसीमा के भीतर होगा। इसके निकास मार्ग का हिस्सा भी ईरानी नियंत्रण में होगा। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा रहा है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। उधर टेनिस में एलिना रायबाकिना ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रायबाकिना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्पुस्की ने जर्मनी के केविन क्रार्वेटेस और टिम पुइट्स को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ରିଲେ କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି ଆମେ ନେଇଛୁ ଅନାଡ଼ି କଥାଚିତ୍ରରୁ। ଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ କୁମାର ସାନୁ ଏବଂ ଆଲକା ୟାଗ୍ନିକ। ସମୀରଙ୍କ ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ଆନନ୍ଦ ମିଲିନ୍ଦ।

परवर्ती भक्तगीतटी शुणन्तु रतिकान्ता शतपथीको कण्ठरु। गीत रचना श्री हर्ष कर एवं संगीतले सजेइछन्ति शरद नायक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
1: इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
0: श्री मोदी ने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन

0: सीतारमन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं टिका सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ ଭକ୍ତି ଗୀତ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ। ପ୍ରଥମେ ଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ଆଶା ଭୋସଲେ ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର କପୁର। ଗୀତ ରଚନା ଆନନ୍ଦ ବକ୍ସି, ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ୟାରେଲାଲ। ଗୀତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅବତାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ।

0: मधुमति फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।
1: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हिमालय की गोद में फिल्म का नाम। आनंद बख्शी ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मन चाहे गीत। आपके फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा उपाध्याय सुनवाने वाली हूं आपके पसंदीदा गीत। और लीजिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ और उसके बाद हम नाम लेंगे उन श्रोताओं का जिन्होंने उसकी फरमाइश लिख भेजी है।

0: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत था। इस गीत को सुनना चाहा था समलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव ने। नेपाली पारा नासिरगंज, हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दर्शा, रितेश लिंबू और उनका परिवार। तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाद्दीन और यूसुफुद्दीन ने। अब्दुल बाबा अंजाना ने भी इसे सुनना चाहा था। वाड़ी वडोदरा गुजरात से गिरीश बाम, वैशाली बाम, अजिंक्य और अक्षय ने इसे सुनना चाहा था। और इसी गीत को सुनना चाहा था बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। इस गीत में अनुरोध फिल्म का नाम आनंद बख्शी ने से लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। और इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी कोल सिटी बरका गाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी और गोविंद चुगनी, परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीला और तुषारिणी, साथ ही साथ खुमेंद्र मसीहा ने से सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। फ्रेंड्स कॉलोनी बैंगलोर से आरिफ हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने, साथ ही पटवा हिम्मतलाल हरकचंद ने, वर्धमान नगर जैन सोसाइटी भचाऊ कच्छ भुज से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म से। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण ने। उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार। गांव चलाना काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल खलील और महबूब दल ने। पुराना तालाब डुमराव से वली अल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम बकार और बिटिया सोनम ने। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे साजन बिना सुहागन फिल्म से। इंदी वर्ने से लिखा, उषा खन्ना का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और उनका समस्त परिवार। कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक। वरोड़ा चंद्रपुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत ने। डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल, मीनू ने। और अकोला महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा था गजानन कुम्हार, पद्मावती कुम्हार, विशाल, ज्योति, मधुर और उनके परिवार ने।
1: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मन चाहे गीत।

चलते चलते ये गीत पाकीज़ा फिल्म से हमने आपको सुनवाया और इस गीत को सुनना चाहा था गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल नेशा ने, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार झाजूरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू ने, रामनाहली बेंगलुरु से मोहम्मद आरिफ, अरफा फातिमा, एमएच शरीफ और आरिफ हुसैन ने, तालुका उमरखेंड ढांकी से राम गाड़ेकर, सुनीता गाड़ेकर और अभिजीत, साथ ही कोमल अभिषेक, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, साथ ही उनका समस्त डागला परिवार इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न होता है।

साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। तो आइए सुनते हैं नाटक साबुन की टिकिया।

0: रोटी, मेरी तो समझ में नहीं आता हम इस पार्क में क्यों चले आए।
1: क्यों, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा फिलिप?
0: अच्छा लगने को यहाँ क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ?
1: फिलिप, यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ।
0: अच्छा, मिस्टर नॉर्मन गॉड्स बाय, आप जरा उस बहुत कुछ पर रोशनी डालेंगे जिसे आपकी सूक्ष्म दृष्टि ने देखा है और ये नाचीज अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाया।
1: देखो फिलिप, इस शहर में सभी लोग सुखी और सफल नहीं। अब बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो जीवन के संघर्ष में अभी तक असफल रहे हूं और निराशा का मुंह देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी निराशा और असफलता को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। ऐसे लोग शाम के धुंधलके में यहाँ आकर बैठ जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके।
0: लेकिन गोटी, इतने पार्क की खूबी कहाँ से आ गई?
1: देखो देखो देखो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। जिंदगी में थके हारे ये लोग अपने दुखी मन को थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा आनंद देने के लिए यहाँ आ जाते। इस शांत वातावरण में, चंद्रमा की चांदनी में कुछ देर बैठकर उन्हें बहुत सुकून मिलता। वो अपना दर्द, अपनी परेशानी सब भूल जाते और जब यहां से जाते हैं तो चेहरे पर उदासी की जगह ताजगी और निराशा की जगह आशा झलकने लगती है। अब बताओ फिलिप, क्या ये कम बड़ी बात?
0: वाकई बहुत बड़ी बात है। और गौश भाई साहब, अब मेरी समझ में आया कि आप आज यहां क्यों तशरीफ लाए हैं।
1: मैं?
0: हाँ, तुम। आज के दिन तुम्हारी मानसिक स्थिति भी किसी निराश और हारे हुए आदमी जैसी ही है।
1: कैसे?
0: तुम्हारी प्रेमिका ने अचानक तुमसे मुंह फेर लिया और उधर बिजनेस में भी थोड़ा घाटा हो गया। ऐसी निराशा में, जैसा कि तुम्हारा कहना है, यहां आकर ही तुम्हें कुछ सुकून मिल सकता था, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं दोस्त, ये बात नहीं है। रोजली ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस थोड़ा सा नाराज हुई है, जो कि उसकी आदत। दो दिन बाद गुस्सा थूक कर खुद ही मुझसे मिलने चले आएगी।
0: अच्छा, ऐसा?
1: हाँ, हमारी दोस्ती इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। अब रही बात बिजनेस की, तो तुम जानते ही हो कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। आज घाटा हुआ तो कल मुनाफा हो सकता। सच मानो फिलिप, यहाँ आने की वजह मेरी निराशा कतई नहीं है। हाँ,
0: तो फिर कौन सी वजह तुम्हें आज यहाँ खींच लाई और तुम मुझे खींच लाए?
1: फिलिप, शायद मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया, मैं अक्सर इस पार्क में आता हूँ।
0: अच्छा?
1: जहाँ आते जाते लोगों के चेहरे पढ़ना मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। अब तुम ही देखो, वो उस बेंच पर अभी अभी जो साहब आकर बैठे हैं ना, उनका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मकान का किराया नहीं दिया और मकान मालकिन के डर से यहाँ चिपे बैठे हैं।
0: अच्छा, वो देखो, वो औरत जो उधर घास पर बैठी है उसका चेहरा क्या बता रहा है?
1: साहब बता रहा है कि उसकी मैडम ने उससे महीने भर काम कराया, लेकिन तनख्वाह देते समय इधर उधर के नुकसान थोप कर सिर्फ 15 दिन के पैसे पकड़ा दिए। लेकिन तुम देखना, थोड़ी देर बाद ही इनके चेहरों के भाव बदल जाएंगे। किरायेदार कल का पक्का वादा करके आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे में जाएगा और वो औरत अपना दब्बूपन छोड़कर मालकिन से पूरी तनख्वाह वसूल करने का निश्चय लेकर घर जाएगी। हाँ, देखना।
0: तुम्हारी संवेदनशीलता की दाद देनी पड़ेगी यार। तुम्हें तो कोई लेखक या चित्रकार होना चाहिए था।
2: पता नहीं यार, तुम लोहे के धंधे में कैसे पड़ गए।
1: नहीं दोस्त, नहीं, बिजनेस से तो मुझे शुरू से ही लगाव रहा है, ये सब तो खाली वक्त के शगल है।
2: अरे गोटी, हाँ। भाई तुम्हारा शगल पूरा हो गया हो तो अब चले यहां से।
1: हाँ, चलो।
2: देखो भाई, मैंने तुम्हें

0: का वक्त दिया है, अब चलकर मुझे कहीं कुछ बढ़िया सा खिलाओ ना।
1: नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, कल या किसी और दिन।
0: क्यों भाई, आज क्यों नहीं?
1: भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, आज बिजनेस में पहले ही नुकसान उठा चुका हूँ, अब और नुकसान नहीं करूंगा।
0: मान गया यार, तुम पक्के बिजनेसमैन हो। चलो आज की दावत मेरी तरफ से रहेगी, चले।
1: हाँ चलो।
0: अरे हाँ यार, याद आया यार, मुझे तो 7 बजे डॉक्टर हैगड़ के पास जाना है, वहां थोड़ी देर लग जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लोगे क्या?
1: नहीं नहीं नहीं फिलिप, नहीं, डॉक्टर के क्लिनिक में दूसरे मरीजों की शक्ल घूरते रहने से अच्छा है कि मैं यहीं बैठकर तुम्हारी राह देखूं।
0: ठीक है, मैं जल्दी ही वापिस आता हूँ।
1: हाँ।
0: लेकिन ध्यान रहे, इस बीच अपना और नुकसान मत कर लेना।

0: बेटा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
1: जी जरूर जरूर बुजुर्गवार, बेंच में बहुत जगह है, आप आराम से बैठिए। आइए आइए।
0: आराम अब कहाँ, अब तो ऊपर जाकर ही आराम नसीब होगा। पर जाने की उम्र से तो ये अभी बहुत दूर लगते हैं,
1: फिर ऐसी निराशा की बातें क्यों कर रहे हैं?
2: ऐसा मत कहिए। अच्छा आप यहाँ रोज आते हैं?
0: और कहाँ जा सकता हूँ, किसी तरह वक्त को काटना ही है।
1: लगता है आपके घर में कोई और सदस्य नहीं है, आप अकेले रहते हैं क्या?
0: हाँ ऐसा ही समझो, मेरी पत्नी पिछले साल दुनिया से चल बसी। घर में दो शादीशुदा बेटे जरूर हैं, लेकिन किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मुझे घर में अकेला छोड़कर बेटे बहुएं बाहर चले जाते हैं।
1: अब तो कहाँ कहाँ चले जाते हैं?
0: अपनी अपनी नौकरी पर।
2: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई निठल्ला नहीं बैठा रहता और इस तरह घर में कुछ पैसा भी आ जाता है, गृहस्थी और अच्छी तरह चलने लगती है।
0: लेकिन मैं तो अकेला रह जाता हूँ, रिटायर होने का ये मतलब तो नहीं कि मुझसे कोई बात करने वाला ना हो, कोई हंसने बोलने वाला ना हो। मैं किस चीज से अपना दिल बहलाऊं, सच मानो ये अपेक्षा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती।
3: ये क्या सहानुभूति दिखाने की बजाय तुम हंस रहे हो?
2: अरे क्या करूं बुजुर्गवार, आपने तो तिल का ताड़ बनाकर रख दिया, जरा सी बात को लेकर आप इतने उदास हैं? है?
3: ये जरा सी बात है, है? इस उम्र में इतना अकेलापन?
2: श्रीमान इस अकेलेपन का इलाज भी आप ही के पास है, आजमा कर देखिए।
3: मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो।
2: श्रीमान आप अपने आप को घर में बंद क्यों करते, बाहर निकलिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी उम्र के कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ाइए, कोई ऐसा हल्का फुल्का काम शुरू कीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, फिर देखिए ना आपको वक्त का पता चलेगा ना ही अकेलेपन का एहसास होगा। क्यों क्या सोचने लगे श्रीमान?
0: नौजवान तुम्हारी बात में वजन है,
3: इस पर अमल करके देखता हूं कितनी कामयाबी मिलती है। अच्छा अब चलूंगा।
2: अरे ऐसी जल्दी क्या है, अभी अभी तो आप आए हैं।
0: आज कुछ जल्दी है, ये थैला देख रहे हो ना?
2: हाँ
0: यहाँ आते हुए बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीदी थी।
2: अच्छा अच्छा
0: इन्हें घर पहुंचाना है। अच्छा
2: हाँ हाँ जरूर जरूर।
1: फिलिप अभी तक नहीं आया, कह रहा था डॉक्टर की क्लिनिक से जल्दी ही लौटूंगा, इतनी देर हो गई।

0: अब आकर विराजमान हो गए?
1: लगता है इस बेंच में कोई खास बात है, तभी जिसे देखो आकर यहीं बैठ जाता। इस बार उन बुजुर्गवार की जगह एक खूबसूरत नौजवान ने ले ली, लेकिन इसके चेहरे पर उन साहब से ज्यादा उदासी छाई। अरे ये तो जैसे अपने आप से कुछ बोलता भी जा रहा है। सुनना चाहिए ये नौजवान क्या बड़बड़ा रहा है।
2: साइमन साहब, आप तो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझते थे, आज देख लिया आप कितने होशियार हैं। आप जरा भी सावधान रहते तो ये नौबत नहीं आती, अब भुगतिए अपनी लापरवाही का नतीजा। और जैसा बुरा दिन तो
1: माफ करना जेंटलमैन, पूछ सकता हूँ आप किससे बातें कर रहे हैं?
2: और किससे करूंगा साहब, नील साइमन से, यानी अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को कोस रहा हूँ।
1: साइमन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जरूर किसी परेशानी में हैं।
2: जिस भंवर जाल में मैं फंसा हूँ, अगर आप फंस जाते तो मेरी ही तरह परेशान मिलते।
1: अच्छा,
2: समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा।
1: ओ, किसी ने आपको धोखा दिया है क्या?
2: अरे नहीं साहब, अपनी इस दुर्दशा के लिए और कोई दूसरा नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर डाली, उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ।
1: आखिर बात क्या हो गई, जरा मुझे बताएंगे?
2: अरे क्या बताऊँ, दरअसल बात यह हुई कि मैं आज दोपहर लंदन आ गया था।
1: अच्छा।
2: और क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छे होटल का पता दे दिया था।
1: हाँ, वो कौन सा होटल?
2: अब वो होटल क्या, हाँ, पेंटागोनियन होटल, वर्कशायर स्क्वायर।
1: पेंटागोनियन होटल? लेकिन वो होटल तो शायद अब नहीं रहा।
2: हाँ वही तो, स्टेशन से टैक्सी लेकर मैं सीधा वर्कशायर स्क्वायर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि होटल को कुछ दिन पहले गिरा दिया गया और उसकी जगह वो सिनेमा घर बना रहा है। कुछ देर मैं यूं ही खड़ा उस इमारत को देखता रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं, कहां ठहरूं।
1: वहां तो आसपास कई अच्छे होटल हैं, आप कहीं भी चले जाते।
2: अब ये सब तो आप जानते हैं ना, मैं तो इस शहर में बिल्कुल अनजाना था। मैंने टैक्सी वाले से किसी अच्छे होटल में ले चलने को कहा तो वो मुझे आसपास नहीं बल्कि काफी दूर ले गया।
1: आपको जानबूझकर दूर ले गया ताकि टैक्सी का अच्छा भाड़ा बन जाए।
2: हो सकता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है, बल्कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को अच्छी खासी टिप भी दी। वो इसलिए कि वो होटल बहुत अच्छा और आरामदायक था।
1: अच्छा अच्छा।
2: खैर, होटल पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को चिट्ठी लिखी और उन्हें अपना नया पता भी लिख दिया, और फिर एक कप चाय पीकर मैं साबुन खरीदने बाहर बाजार की ओर निकल पड़ा।
1: साबुन खरीदने?
2: जी
1: साइमन साहब, मैं कुछ समझा नहीं।
2: वो आप समझेंगे भी कैसे, मैं आपको क्या बताऊं मिस्टर, वो सॉरी, आपका शुभ नाम जान सकता हूं?
1: हाँ, गोट्स बाय, नॉर्मन गोट्स बाय। वैसे आप मुझे गोटी कहकर बुला सकते हैं।
2: ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो मिस्टर गोटी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूं साबुन अपना ही इस्तेमाल करता हूं, होटल का साबुन इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है।
1: अजीब आदत है।
2: हाँ है तो अजीब ही, वैसे शुरू से ही मैं अपना अलग साबुन रखता हूं, इस बार मैं सामान में साबुन रखना भूल गया। खैर, मैंने होटल में एक प्याला चाय पी और साबुन खरीदने निकल पड़ा। साबुन खरीदा और घूमता फिरता दूर तक निकल गया, सोचा बाजार की रौनक ही देख लूं।
1: लगता है आपको हमारा शहर बहुत पसंद आ गया। वैसे लंदन बुरा शहर नहीं है, आपका क्या ख्याल?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, लंदन बड़ा ही अच्छा शहर है, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी से यहां रहने का सारा मजा किरकिरा कर दिया।
1: वो कैसे?
2: अब वही वही बता रहा हूं। अब देखिए, काफी दूर निकल जाने के बाद मैंने

0: मैंने सोचा कि अब लौटना चाहिए।
1: हाँ।
0: बस मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं उस होटल का नाम ही भूल गया हूँ।
1: अरे
0: अब होटल का नाम ही नहीं, मैं उस सड़क उस एरिया का नाम भी नहीं जानता था जहाँ वो होटल था।
1: तो फिर आपने क्या किया?
0: क्या करता, कभी कभी एक सड़क पर चला जाता, कभी दूसरी तरफ निकल जाता, लेकिन ना तो वो होटल मिला और ना ही उसका नाम याद आया।
1: ओह,
0: तब से मैं यूं ही भटक रहा हूं। मिस्टर गोटी, जो आदमी लंदन पहली बार आया, जिसका यहां ना कोई दोस्त हो ना रिश्तेदार, उसकी परेशानी का आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं।
2: हाँ, वाकई परेशानी की बात तो है साइमन साहब।
0: हाँ,
2: मैं क्या आपकी समस्या का कोई हल नहीं है?
0: समस्या का एक ही हल है, वो ये कि मैं अपने घर पर तार कर दूं और उनसे होटल का नाम पता भेजने को कहूं। लेकिन इसमें भी एक मुश्किल है।
2: वो कैसी मुश्किल?
0: अब देखिए, घर वालों को मैंने आज ही चिट्ठी भेजी है, उन्हें 2-3 दिन बाद चिट्ठी मिलेगी, तब तक मैं कहां रहूंगा, कहां जाऊंगा? सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
2: देखिए, इस तरह परेशान होने से क्या होगा, शांत रहिए और सोचिए कि इस उलझन से निकलने का अब क्या रास्ता हो सकता है। अरे हाँ हाँ साइमन साहब, एक रास्ता तो है।
0: क्या?
2: आप अपने घर तार भेजिए और कल परसों तक, जब तक उनका जवाब आता है, आप किसी दूसरे होटल में चले जाइए। आपके बटुए में फिलहाल इतने पैसे तो होंगे कि आप कोई सस्ता सा होटल।
0: मिस्टर गोटी, वही तो समस्या है, इस वक्त मेरी जेब बिल्कुल खाली है। दरअसल मैं 1 शिलिंग जेब में डालकर होटल से बाहर निकला था, जो मैंने साबुन में खर्च कर दिया। अब तो जेब में बस ये 2 पेंस पड़े हुए हैं। देखिए, काश मैं होटल से अपना बटुआ लेकर चलता।
2: कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी कपड़ों से, बोलचाल से संपन्न ही दिखाई देता है। बेचारा आज कैसी परेशानी में पड़ गया।
0: मिस्टर गोटी, आप क्या सोचने लगे?
2: जी वो
0: समझ गया। आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने मन से किस्सा गढ़कर आपको सुनाया है। नहीं, इसमें आपका दोष नहीं, ये वाकया है ही इतना अजीब कि कोई आसानी से यकीन नहीं करेगा।
2: नहीं साइमन साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो कहानी सुनाई है, उसका एक एक शब्द सच हो सकता है। मेरे साथ एक बार बिल्कुल ऐसी ही घटना हो चुकी है। हाँ हाँ
0: अच्छा
2: हाँ, एक बार पेरिस में मैं भी कुछ ऐसी ही भूल कर बैठा था।
0: हो,
2: और मजेदार बात यह है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था।
0: अच्छा?
2: हाँ, हम दोनों ही भुलक्कड़ निकले। गनीमत थी कि हमें इतना याद रहा कि हमारा होटल नहर के किनारे, बस नहर के साथ साथ चलते रहे और किसी तरह होटल पहुंच ही गए।
0: चलिए, तब तो आपको मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास हो गया। क्या है मिस्टर गोटी, के अगर मैं आपकी तरह विदेश में रास्ता भूल गया होता तो इतना घबराता नहीं, लेकिन अपने ही देश में मैं।
2: अरे ये आप क्या कह रहे हैं, पराए देश में तो आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है।
0: हाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, अगर मैं विदेश में होता तो ऐसी स्थिति में अपने दूतावास से जरूर मदद ले सकता था।
2: हाँ,
0: लेकिन यहां तो मैं अपने ही देश में हूं। गोटी साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मैं अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहा हूं।
2: साइमन साहब, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। क्या आपका होटल ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं?
0: नहीं, इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ आप भी खामा खा इधर से उधर भटकते रहेंगे। अब तो थेम्स के किनारे मैदान में रात गुजारने के सिवाय और कोई चारा नहीं। अब मिस्टर कोटी,
2: हाँ कहिए।
0: हाँ, आप अगर मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो
2: हाँ बताइए बताइए संकोच।

0: कीजिए, बताइए ना।
1: अब क्या क्या मुझ पर विश्वास करके मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं?
0: सिर्फ एक दो दिन के लिए, जब तक मैं अपने होटल नहीं पहुंच जाता।
1: बहुत ज्यादा नहीं, बस बस इतने कि दो दिन अच्छी तरह बिता सकूं, बस।
2: सचमुच ये आदमी मुसीबत में है, इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे पैसे जरूर लौटा देगा।
0: मिस्टर गोटी, हाँ, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं।
2: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए साइमन साहब। मुझे पूरा विश्वास है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा।
0: हाँ, शुक्रिया शुक्रिया।
2: हाँ,
0: शुक्रिया। इस भलमन साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर कुछ सोचने लगे?
2: हाँ, इस बार जरूर कुछ सोच रहा हूँ। साइमन साहब
0: जी,
2: आपने कहानी तो विश्वास करने लायक सुनाई है,
0: कहानी,
2: लेकिन इसमें एक कमजोर कड़ी है। वो खासी कमजोर कड़ी है।
0: मैं कुछ समझा नहीं।
2: साइमन साहब, आप साबुन नहीं दिखा रहे हैं जो आपने खरीदा था। मैं वो साबुन देख सकता हूँ?
0: वो साबुन की टिकटिकिया? हाँ, मेरी जेब में होनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ।
2: यहाँ जेब में?
0: हाँ,
2: इसमें भी नहीं है। कोट की सारी जेबें अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ हाँ,
0: वही वही वही देख रहा हूँ। नहीं, यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। लगता है वो साबुन की टिकिया भी कहीं खो गई है।
2: खो गई? एक ही दिन में अपना होटल भूल जाना और साबुन भी खो देना,
0: जी,
2: ये कुछ विश्वसनीय नहीं लगता साइमन साहब।
0: आप मेरी बात
2: आपको कोई ठोस कहानी गढ़नी चाहिए थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये कहानी तो फिस हो गई साइमन साहब। अब किसी और आदमी से पैसे ऐंठना चाहो तो कोई ठीक बहाना बनाइएगा, वरना। अरे कहाँ चल दिए साइमन साहब, कहाँ चल दिए? अरे रुकिए तो। बेचारा, कहानी तो बहुत बढ़िया गढ़ी थी। एक एक हिस्सा ऐसा था जिस पर कोई आंख मूंद कर विश्वास कर ले, लेकिन साबुन खरीदने के प्रसंग ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे ये प्रसंग ना होता या साबुन की एक टिकिया भी जेब में डाल लाता तो धोखा धड़ी के धंधे में आज उसकी प्रतिभा का सिक्का जम जाता। लगता है इस धंधे में अभी नौसिखिया है।
0: अरे ये मेरे पांव से क्या चीज टकराई?
2: क्या है ये कागज में लिपटी हुई कोई गोल सी चीज? साबुन की खुशबू भी आ रही। अरे ये तो साबुन की टिकिया है।
0: अरे ये जरूर साइमन की जेब से गिर गई होगी।
2: इसका मतलब उसने सचमुच साबुन खरीदा था। ये तो अनर्थ हो गया। मैं अभी जाकर उस मुसीबत जदा की मदद करता हूं। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अभी जाता हूं।
0: अरे साइमन साहब, साइमन साहब रुकिए।
1: साइमन साहब, मिस्टर गोटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए।
2: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
1: ये आप क्या कह रहे हैं?
2: देखिए, आप जैसे भले आदमी पर शक किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मुझे आपकी कहानी की सच्चाई का मुख्य गवाह मिल गया है।
1: गवाह?
2: हाँ, ये देखिए साबुन की टिकिया आपकी कोट से गिर गई होगी। देखिए, मुझे ये वहीं उसी बेंच के पास पड़ी मिली।
0: हाँ, वो पता नहीं कब जेब से गिर गई। वो परेशानी में कुछ ध्यान ही नहीं रहा।
2: खैर, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे आपकी मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं एक गिन्नी उधार देता हूँ मैं आपको। ये इससे काम चल जाएगा आपका?
0: जैसा आप ठीक समझे।
2: नहीं नहीं नहीं, आपको दिक्कत हो सकती है।
0: हाँ,
2: मैं आपको दो गिन्नियां दे देता हूँ। उम्मीद है अब आपका काम आराम से चल जाएगा। ये लीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे

0: भारी मुसीबत से बचा लिया। मैं जान, अरे हाँ, आप अपना पता दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके घर आकर ये उधार चुका दूंगा।
1: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। ये लीजिए, ये रहा मेरा कार्ड।
0: थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब इजाजत दीजिए।
1: अरे अरे साइमन साहब, ये साबुन तो लेते जाइए।
0: लाइए। थैंक यू वेरी मच।
1: और देखिए, अब इसे दोबारा मत खो देना, ये आपके आड़े समय में काम आया है।

0: ये साबुन तो लेते जाइए।
1: लाइए, थैंक यू वेरी मच।
0: और देखिए अब इसे दोबारा मत खो देना, ये आपके आड़े समय में काम आया है। बाय बाय बाय।
2: बेचारा मेरे इस व्यवहार से कितना खुश हो गया, चेहरे पर निराशा की जगह उत्साह दिखाई देने लगा था। शुरू में मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही होशियारी बरत रहा था, ये अच्छी बात नहीं थी। मैंने अपनी गलती सुधार ली, ये अच्छा ही हुआ। अरे बाप रे, 8 बज गए। अरे वहां पार्क में फिलिप पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे फौरन वहीं पहुंचना चाहिए। चलता हूं मैं।

0: फिलिप, फिलिप माफ करना, मैं जरा बाजार की तरफ निकल गया था। अब आए, ये तो फिलिप नहीं कोई और ही साहब है। ओह, ये तो वही बुजुर्गवार हैं जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ यहां बैठे थे, लेकिन ये बेंच के नीचे झुककर क्या ढूंढ रहे हैं? बुजुर्गवार, लगता है आपको कुछ खो गया है।
1: हाँ, मेरी साबुन की टिकिया खो गई है।
0: क्या, साबुन की टिकिया?
1: हाँ, अब मैंने जो सामान खरीदा था,
0: हाँ,
1: उसमें एक साबुन की टिकिया भी थी, वो कहीं गिर गई।
0: लेकिन वो,
1: मेरा ख्याल है वो यहीं गिरी है, बेंच पर बैठते समय थैला टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा और टिकिया नीचे गिर गई। चिंता न करो, यहाँ गिरी है तो मिल ही जाएगी।
0: इसका मतलब वो साबुन की टिकिया उस धोखेबाज की नहीं, इन बुजुर्गवार की थी। मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी, उस धोखेबाज को साबुन की टिकिया के चक्कर में एक नहीं दो दो गिनियां दे दी। आज ही आज मैं अपना दूसरा नुकसान कर बैठा। इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।

श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपने सुना नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: पुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनके लिए सिनेमा सिर्फ एक पेशा या कला नहीं बल्कि परिवार की विरासत भी है। यानी आज हम बातचीत करने जा रहे हैं महान फिल्मकार बिमल रॉय की बेटी रिंकी भट्टाचार्य से। वो बिमल रॉय जिन्होंने भारतीय फिल्मों को अलग अर्थों में गढ़ा। तो रिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते, मैं बहुत खुश हूँ
1: जी।
2: मेरे से जो भी होगा पिताजी के बारे में मैं कहूँगा
1: जी। बिल्कुल। तो रिंकी जी, हम आपकी आंखों से देखने की आज कोशिश करेंगे महान फिल्मकार बिमल रॉय साहब को। हम बिमल रॉय को एक महान फिल्मकार के रूप में जानते हैं, लेकिन आप उन्हें एक पिता के तौर पर जानती हैं। तो सबसे पहले हम सभी का यही सवाल होगा कि कैसे थे पिता के रूप में बिमल रॉय साहब।
2: मैं तो बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ
1: जी,
2: क्योंकि पिताजी का जैसा पिताजी मिलना ये छोटी बात नहीं है। और हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा महान का वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। एकदम घर में जैसे साधारण हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में सब बड़े हुए हैं
1: जी।
2: उनके साथ उससे हमको पता ही नहीं चलता था कि पिताजी बाहर उनका एक रूप है, बाहर उनका कोई स्टेटस है। और हमारा चाइल्डहुड बहुत ही एकदम सुखदायक था
1: जी।
2: बहुत ही बहुत खुश, हम लोग सब बहुत खुश थे। फैमिली मैन थे वो, फर्स्ट फैमिली मैन थे वो
1: जी।
2: घर में आके उनका पूरा यही बदल जाता था,
1: एक रूप ही बदल जाता था।
2: हाँ, रूप ही बदल जाता था।
1: मतलब आपके पिता घर पर फिल्मकार नहीं होते थे, एक पिता ही होते थे
2: जी। सही बात है
1: जी। तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपके पिता बाकी लोगों से कुछ अलग है, बाहर उनका बहुत बड़ा रुतबा है या वो इतने महान फिल्मकार हैं?
2: ये हमको पता ही नहीं चला कि बाहर उनका क्या रूप है, क्या स्टेटस है, क्योंकि पिताजी को जो उनका बिहेवियर था घर में तो वो एकदम साधारण जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पिता पुत्री का जो रिलेशनशिप होता है एकदम सहज सरल। हम लोग जो बड़े हुए हैं हम बहुत ही सरल, मैं तो एक ही अंग्रेजी शब्द बोलती हूँ, ब्लेस्ड
1: जी,
2: ट्रूली ब्लेस्ड
1: जी। जी, तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन आप लोग थे, और आपकी माता जी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वो किस तरह से उनकी फिल्मों से जुड़ी रही, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी रही
2: जी। लेकिन मेरी माँ जो थी वो एकदम अलग थी, और उनका जो खुद आइडेंटिटी एक था
1: जी,
2: शी वॉज ए फोटोग्राफर, और उनके बारे में सब लोग आजकल जानते हैं। उनका जो फोटोग्राफी है वो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े व्यक्ति के फोटोग्राफ लिया है, जैसे टैगोर का लिया है, और नेहरू का लिया है, इंदिरा गांधी का लिया है। मैंने मेरी माँ का जो पोर्ट्रेट्स है उसमें इन सब लोगों को नाम जुड़ता है
1: जी।
2: तो पिता, और वो बहुत पिताजी के साथ बहुत ही उनका एकदम बहुत सुंदर रिश्ता था
1: जी,
2: बहुत सुंदर रिश्ता था।
1: क्या नाम था आपकी माँ का?
2: मेरी माता का नाम था मनोबीना रॉय
1: जी।
2: जी,
1: तो वो एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी, और उनका एक व्यक्तित्व था। आपके और भाई बहन भी हैं जो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
2: मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद में दो सिस्टर्स हैं और एक भाई है जॉय, जो अभी देखभाल करता है अपना, मेरा पिताजी का जो लेगेसी है उसके साथ हम लोग सभी मिलकर काम करते हैं एक साथ
1: जी। जी, तो रिंकी जी, आपको पहली बार उनकी फिल्मों से जुड़ना आपका कैसे हुआ, किस तरह से आप उनकी फिल्मों से जुड़ी? क्या बचपन में आप अपने पिता के साथ उनकी फिल्में देखने जाया करती थी, या उनकी जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया थी उनसे वाकिफ थी, या उनके साथ जाया करती थी, ऐसा कुछ हुआ कभी?
2: नहीं, पिताजी का कोशिश ये रहता था कि वो फिल्मी दुनिया से हम लोग को अलग रखे।
1: अच्छा।
2: और हम अगर बुलाते थे शूटिंग देखने के लिए तो कोई गाना वाना शूट होता तो हमको बुलाते थे, जो बच्चों को जो अच्छा लगता है उसके लिए बुलाते थे, नहीं तो हम कभी स्टूडियो में जाते ही नहीं थे। उनका अलग ही था, वो दोनों जो दुनिया है ना, फिल्म का दुनिया और घर का दुनिया अलग था हमारे घर में
1: जी।
2: और वो बहुत एडुकेशनिस्ट थे पिताजी। मैं तो बॉम्बे चली आई, मेरे तब 9-10 साल होगा, तो लेकिन उन्होंने ऐसे कोशिश किया कि मैं बंगला सीखूं, क्योंकि मेरा मातृभाषा बंगाली है
1: जी।
2: तो उन्होंने मेरे लिए सब बंगाली किताब मंगाते थे घर कलकत्ता से, और हमको देखते थे कि हम करते हैं कि नहीं। उनका उत्साह था कि हम बंगला सीखें, बंगला बंगाली कल्चर को भी अपनाएं, इस सब

दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों विविध भारती की टीम फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य के घर गई, रिकॉर्डिंग की उजाले उनकी यादों के। तो चलिए सुनते हैं आज वही कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री।

0: बहुत बहुत उनका देन ये है मेरे जिंदगी में कि पिताजी के लिए मैंने ये सीखा है, नहीं तो मैं शायद नहीं करती थी।
1: पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा,
0: बहुत प्रभाव। हाँ,
1: तो एक बेटी होने के नाते रिंकी भट्टाचार्य पर क्या प्रभाव था, कितना प्रेशर था, कितना दबाव था, तो आप क्या कहेंगी?
0: नहीं, दबाव तो मैं नहीं कहूंगी, पिताजी का जो पूरा कल्चर था उससे हमने बहुत कुछ सीखा है कि पिताजी को खाली घर के लिए नहीं, पिताजी को इंडियन कल्चर से बहुत प्राउड थे वो। इंडियन कल्चर, कोई भी कल्चरल ये होता था, वो नेहरू को जानते थे पर्सनली, इंदिरा गांधी को जानते थे पर्सनली, तो ऐसे जो जिंदगी जिसके ये होता है तो उनके लिए तो अलग ही होता ना,
1: एटीट्यूड।
0: हाँ, उनका एटीट्यूड ही अलग था इन सब के बारे में, और हम लोग ने वो ही सीखा है पिताजी। वो बहुत जल्दी चले गए, पिताजी की उम्र बहुत कम था जब चले गए, तो इसीलिए उनका सबसे बड़ा फिल्म एक जो बनने वाला था वो नहीं बनी, और हमको इसका बहुत दुख है। और जो लिखा था गुलजार लिख रहे थे उसको, तो उसका उसका नाम था अमृत कुंभ।
1: अच्छा,
0: अमृत कुंभ के ऊपर एक रियल लाइफ स्टोरी था
1: जी।
0: उसको उन्होंने लिया कि उसको वो था, लेकिन उसका शूटिंग करते करते पिताजी का ये हो गया, कैंसर में भुगते थे, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे
1: जी।
0: उनका हाथ में हमेशा सिगरेट होता था, और उनका ये जो सामने का उंगलियां है ना उसमें से सिगरेट निकोटिन के दाग हो गया था इतना। हाँ, तो उससे उनको दुख भरी बात ये है कि उनको वो कोई हम नहीं छोड़ा सके उसको
1: जी।

0: विमल रॉय एक महान फिल्मकार के रूप में उन्होंने इतनी कालजयी फिल्में हमें दी और गुरु के रूप में उन्होंने एक नई श्रृंखला बनाई उनके जैसी फिल्मों का आगे निर्माण किया लोगों ने। तो एक फिल्मकार के रूप में या एक गुरु के रूप में आप क्या मानती हैं, वो किस तरह से रही होंगी?
1: पिताजी ने जो उनके उनके साथ जो जो काम किया, जैसे गुलजार है, ऋषिकेश मुखर्जी है, आशीष सेन है, इनको सबको उनका प्रभाव से बहुत उत्साहित किया था फिल्म बनाने के लिए और उनको उत्साह देते थे।

0: और उनको चांस भी मिलता था कि हमारा प्रोडक्शन विमल राय प्रोडक्शन में उनका फिल्म भी बनती थी। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि असली गुरु का हिसाब जो गुरु दक्षिणा इनको देना चाहिए
1: जी
0: सबको
1: जी। उनकी कालजयी फिल्में हैं जैसे दो बीघा जमीन है, देवदास है, परिणीता है, मधुमती है, सुजाता है, परख है और बंदिनी। इन मतलब एक एक फिल्म पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कितने एपिसोड निकल सकते हैं, कितनी लंबी विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो रिंकी भट्टाचार्य उस उम्र में उन फिल्मों को देखकर क्या सोचती थी?
0: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
1: जी।
0: सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
1: जी
0: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से। हाँ तो इसलिए ना पिता खाली दो बीघा जमीन को लिखा था सलील चौधरी ने, तो वो फिल्म के लिए लिखा था, पिताजी के लिए लिखे थे। तो उसको जो फिल्म बनाए पिताजी उसका कोई लिटरेरी वर्शन नहीं था,
1: जी।
0: हाँ उनको लिखा था पिताजी के लिए सलील चौधरी ने, और उनको जो फिल्म है आज तो दो बीघा जमीन को सबसे बड़ा मान्यता मिलती है, यहाँ वहाँ फॉरेन कंट्रीज में सब में दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जब बात चली है दो बीघा जमीन की, तो कैसे इस महान फिल्म की रचना हुई होगी, किस तरह की घटनाक्रम में फिल्म बनी होगी उस जमाने में?
0: ये मुझे कभी कभी लगता है कि दो बीघा जमीन तो से उनका जिंदगी इसका बहुत असर है
1: जी।
0: क्योंकि पिताजी भी जब छोटे थे उनको घर से उनका जो जमीन था ईस्ट बंगाल, हम लोग ईस्ट बंगाल के हैं ढाका के
1: जी।
0: तो वहां से उनको निकाला गया था, तो वो भूल वो उनका जो वो दर्द था वो ट्रेजेडी था, हाँ तो वो भूल नहीं सके थे। तो मुझे लगता है इससे दो बीघा जमीन में और बहुत बहुत इंटेंसिटी हो गई। इसके लिए ना पिताजी के लिए वो जो वो दुर्घटना थी कि उनको घर से निकाला गया था वो भूल नहीं पाए कभी भी। हमेशा चाहते थे कि जाएं, हम जब ईस्ट बंगाल चलेंगे सोचते थे कि हम जाएंगे वहां पे। तो उसका वो ट्रेजेडी जो था वो जिंदगी भर उन्होंने उसका ये किया,
1: मन में रहा और उसी पीड़ा का परिणाम दो बीघा जमीन में उतरा
0: जी, जी
1: जी। तो जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो बलराज साहनी और बिमल राय की जोड़ी ने जिस तरह से यथार्थ को पर्दे पर उतारा वो अद्भुत था। तो उस वक्त उस फिल्म की सफलता को घर में आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया होगा?
0: नहीं, हमारे घर में ऐसे सेलिब्रेशन कोई नहीं होते थे फिल्म को लेके, लेकिन पिताजी का ये जो दो बीघा जमीन है ना, ये मैं कहूंगी कि पिताजी का श्रेष्ठ है, लोग सोचते हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगी सब फिल्म सुजाता बंदिनी सबको लेके जब लोग देखते हैं ना तभी बोलते हैं कि कैसे कहाँ से आया स्टोरी। उनको लिटरेचर पे बहुत ये था, बहुत वो ये थे प्रभावित थे लिटरेचर बंगाली लिटरेचर के
1: जी जी था। जी तो फिल्म दो बीघा जमीन के जो शंभू की पीड़ा थी वो आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में व्याप्त है।
0: जरूर, मैं तो बोलूंगा ये बहुत सच बात है। हमने जो फिल्म दिखाई थी वेनिस फेस्टिवल में लास्ट ईयर, तो वहाँ सब लोग खड़े होते हैं, जैसे ही फिल्म खत्म हुई सब लोग रो रहे थे
1: जी,
0: इतना उसका प्रभाव था। हाँ, एक इंडियन फिल्म कोई स्टार नहीं उसमें, हाँ फिर भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल में उसका क्या भूमिका थी वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकते, आप वो देखने वाली एक्सपीरियंस करने वाली चीज थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं गई उनके साथ, वहाँ फेस्टिवल मैंने एक अटेंड किया और हम लोग जब वापस आए तो मुझे बहुत बहुत बहुत मुझे प्राउड फील रहा कि इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है, हासिल किया है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है ये
1: जी। तो रिंकी जी, जब बात दो बीघा जमीन की चल रही है तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत हम सुन लें, आप बताएंगे कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: जो लोरी है जिसमें मीना कुमारी ने एक छोटा सा भूमिका किया है।

0: बहुत सुंदर लोरी है ये रिंकी जी, इस लोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: जरूर, मैं बताना चाहूंगी कि मीना कुमारी जो मेरे पिताजी के बहुत करीब थे
0: जी,
1: और पिताजी उनको बहुत स्नेह करते थे
0: जी,
1: तो उन्होंने बोला कि दादा आपने फिल्म तो बनाई लेकिन मुझे आपने रोल नहीं दिया कुछ, तो पिताजी ने बोला कि उसमें तो तुम्हारे लिए लायक कोई रोल नहीं था
0: हाँ।
1: लेकिन ठीक है, हम एक गाना डालेंगे तो उसमें तुमको मैं ले लेती हूँ
0: जी।
1: तो इसीलिए मीना कुमारी ऑन स्क्रीन मीना कुमारी सिंगिंग लोरी
0: हाँ। और ये लोरी बहुत
1: हम लोग सब गए थे रिकॉर्डिंग के लिए
0: जी,
1: कहाँ पे मुझे पता नहीं कौन से स्टूडियो, शायद दादरा में कोई स्टूडियो था, वहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हुए और ये लोरी का रिकॉर्डिंग हुआ 4 बजे सुबह चार बजे
0: रिकॉर्डिंग। तो लता मंगेशकर की गाई हुई लोरी है हाँ। तो सुबह 4 बजे इसकी रिकॉर्डिंग हुई,
1: सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग
0: जी जी,
1: और तब तक लता जी वहीं पे बैठी थी।
0: अच्छा,
1: नेचुरली
0: हाँ,
1: उनका ही गाना है ना,
0: तो बहुत टेक रिटेक हुई होंगे मतलब?
1: नहीं नहीं, बहुत टेक नहीं
0: हाँ।
1: वो तो एक स्पेशलिस्ट थी।
0: इस तरह के बहुत सारे गीत पर हम बात करेंगे। फिल्म देवदास पर हम आना चाहेंगे, एक ऐसी फिल्म है देवदास जो अमर हो गया ये किरदार,
1: और एक फर्स्ट टाइम साहिल लुधियानवी ने गाना लिखा था उसमें
0: हाँ, जी जी,
1: और एस डी बर्मन
0: साहब का संगीत हाँ। है, और इतना यूनिक संगीत है और गाने के बोल जो है आज भी मतलब
1: मुझे तो एक सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है, मितवा करके गाना है जो
0: जी,
1: गीत तो पसंद है ही, और ऑन स्क्रीन मीना कुमारी बहुत सुंदर लग रही है
0: जी जी,
1: उनका जो ये है ना वो सीक्वेंस बहुत सुंदर है।
0: तो फिल्म देवदास की जैसे हमने बात की कि ये एक ऐसा कालजयी फिल्म, और एक ये जो पात्र है ये भी अमर हो गया, और क्या उस वक्त जब ये फिल्म बनाई गई थी तो क्या ये सोचकर बनाई गई थी कि ये प्रेम और विरह की कहानी है, आप क्या सोचती हैं?
1: नहीं, देवदास का क्या है, फर्स्ट देवदास जब बने थे पिताजी उसके कैमरामैन थे।
0: अच्छा
1: हाँ, बड़ुआ के देवदास,
0: जब केएल सहगल साहब जिसमें
1: केएल सहगल थे पिताजी उसका मेन ये थे कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: तो उनको तब से उनको लगता है, और पिताजी का सबसे मुझे अजीब लगता है कि पिताजी तो घर में हमारे घर में दारू शारू का कुछ ये ही नहीं था, लेकिन पिताजी ने फिल्म बनाई एक पियक करके ऊपर
0: जी
1: हाँ। लेकिन ये आज भी देवदास के लिए लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा, और गाने भी बहुत सुंदर,
0: बहुत शानदार,
1: बहुत सुंदर गाने।
0: हालांकि देवदास के आज तो कई फिल्मी संस्करण निकल गए।

0: कई फिल्में कितनी बार बन चुकी है, लेकिन बिमल रॉय की जो देवदास है वो आज भी बिल्कुल अलग लगती है।
1: जी मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इसके बारे में।
0: बिल्कुल, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि क्या बिमल रॉय ऐसा मानते थे कि उस वक्त सिनेमा समाज को बदल सकता है? आप उस वक्त कितनी उम्र की थी और आपने क्या समझा होगा, क्या जाना होगा उस वक्त?
1: मेरा उम्र तो कुछ ज्यादा नहीं था, तब 15 साल की थी। तो जब देवदास बनी, देवदास का जो ये खास बात मुझे बोलना है कि देवदास के पारो का अभिनय जो है सुचित्रा सेन, उसको पिताजी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो आई थी, वो हमारे घर की बहू समझा जाती थी, उनका शादी हुआ था हमारे घर में
0: जी।
1: तो जब एक दफे उनको फिल्म में उतरना था तो पिताजी के पास सबसे पहले आए, तो पिताजी ने बोला तुम घर की बहू हो, तुम कैसे फिल्म में काम करोगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। तो उसी को पिताजी ने बुलाया देवदास के लिए, तो हम लोग बहुत हंसते थे कि पिताजी को और फिर से दोबारा उनको बुलाना पड़ा।
0: हाँ।
1: क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई नहीं।
0: हाँ।
1: पारू का ये जो किया था
0: अभी नहीं था।
1: हाँ।
0: वो कोई और कर ही नहीं सकता था, ऐसा बिमल रॉय साहब का मानना था।
1: कोई कर नहीं सकता था।
0: और वो अद्भुत सुंदर लगी है उसमें, और ये पात्र कितना जीवंत हो गया, पारू की भूमिका कितनी मतलब कालजयी एक भूमिका हो गई है, आज भी याद की जाती है।
1: जी,
0: लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा उस वक्त देवदास फिल्म को देखने के?
1: लोग तो एकदम पूरा हाउसफुल जाता था, पूरा हाउसफुल जाता था, लेकिन मेरा हिसाब से कि पिताजी का देवदास जो इतना बड़ा बना है, क्योंकि उससे पिताजी उसको समझते थे, वो समझे जब ये है ना समस्या
0: व्यवस्थाएं थी उसको।
1: हाँ, उनको समझते थे, इसीलिए उसका इतना प्रभाव आज भी है। आज भी कोई मैं तो आज भी देवदास देखने में मुझे डर लगता है कि इतना इसका जो ये है ना माहौल जो है बहुत बहुत इंप्रेस करता है
0: जी,
1: बहुत ज्यादा
0: जी।
1: और आई थिंक मुझे लगता है कि वैजयंती माला भी जस्ट उसके पहले बंद होते किया था उन्होंने, क्योंकि वो डांसर भी थे ना, इसलिए उसमें देवदास में डांस तो है, इसीलिए
0: बहुत सुंदर है। तो इस फिल्म को जब निर्माण किया जा रहा था, इस फिल्म का जब निर्देशन कर रहे थे बिमल रॉय, तो उनकी दिनचर्या क्या रहती थी, और आप परिवार वालों की दिनचर्या क्या उस वक्त थोड़ी बदल जाती थी?
1: नहीं नहीं नहीं, पिताजी जो काम करते काम को अलग ही रखते थे वो घर से। हमारा घरेलू जो ये है ना
0: वो अलग था,
1: अलग था एकदम, और काम का ये बहुत ही अलग था, तो कभी नहीं मिक्स करते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे एज ए डायरेक्टर, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा इतना डिसिप्लिन मैं देखा नहीं किसी को आज तक
0: जी,
1: कि इतना डिसिप्लिन थे, उनको कहाँ पे कब जाना है क्या करना है सब उनको बहुत पता था।
0: हाँ,
1: तो इससे हमको हमारा भी बहुत प्रभाव हुआ कि हमको भी पिताजी का सब शायद समय बिताने को मिला। हाँ, तो इसीलिए ना कि हमको कोई ये नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है कि देवदास बनाते थे या कोई बंदिनी बनाते थे। बंदिनी तो उनकी लास्ट फिल्म है, बंदिनी के बाद तो उनका बंद हो गया काम
0: जी।
1: हाँ, तो बहुत बहुत अहम बात है कि पिताजी कभी दोनों को मिक्स नहीं करते थे
0: जी। जी, तो आप लोग क्या फिल्म हॉल में जाकर इस फिल्म को देखा था?
1: नहीं, जाते थे, देखते थे, हम लोग हॉल में भी जाते थे, लेकिन जो एडल्ट फिल्म है जैसे देवदास तो एक एडल्ट फिल्म है
0: जी,
1: तो देवदास के लिए हमारा हम लोग को जाना ठीक नहीं लगता था, तो पिताजी ने हमको देवदास हमने हॉल में कभी नहीं देखा।
0: अच्छा।
1: हाँ, उसमें एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मैं बोलती हूँ कि उसका स्टोरी का तो एडल्ट
0: जी,
1: उसका एडल्ट इंटरप्रिटेशन है, तो इसीलिए उनके लिए जो रिलीज हुई थी, अब मुझे तो याद नहीं कि मैं हॉल में जाके कभी भी देवदास देखा। मैंने फर्स्ट देखा दूरदर्शन में।
0: अच्छा, दूरदर्शन में आपने ये फिल्म देखी होगी। तो इस फिल्म के गानों के बारे में तो हम क्या ही आपसे कहें, एसडी बर्मन साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी जो आपकी खास पसंद होगा?
1: मेरा खास पसंद है आगे तेरी मर्जी।
0: आगे तेरी मर्जी जी, बिल्कुल।

0: तो आपके घर में बराबर पढ़ाई का माहौल रहता था, बच्चे घर में पढ़ाई करना
1: पूरा? पिताजी का ये भी था कि हमको ऑक्सफोर्ड में ले जाए पढ़ाए।
0: अच्छा।
1: हमको देख के लेके भी गए थे लंदन
0: जी
1: दिखाने के लिए, लेकिन मैं, मुझे ठीक नहीं लगा कि हम इस परिवार से इतना दूर रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ नहीं किया। नहीं तो आज मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न होती थी
0: जी,
1: अगर मैंने उनका इस पर
0: बात को माना था। घर से दूर जाना आपको पसंद नहीं था, तो घर में एक आपसी सब में एक तारतम्य था, सामंजस्य था, प्रेम की भावना, सब एक दूसरे से गूंथे हुए।
1: एकदम
0: बहुत बड़ी बात होती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे और
1: फिल्म दुनिया में स्पेशल
0: फिल्म दुनिया में रहकर एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना, विश्वास करना, सबसे बड़ी बात ये रही थी।
1: और हमारे सामने हम दूसरे फिल्मी दुनिया देखते थे, फिल्मी घर आना देखते थे, मुझे लगता था ये हमारा घर इतना अलग क्यों है, क्योंकि हमारे घर में कोई माहौल ऐसा नहीं था, कोई भी माहौल नहीं था कि हम लोग कुछ पढ़ा लिखा ये सब हमको उत्साह करना। पिताजी का बहुत अहम बात था, पिताजी बहुत मानते थे, ही वॉज एक्चुअली एजुकेशनिस्ट। आपने देखा है ना पिताजी हमारे बिमल रॉय में, बिमल रॉय फिल्म्स का जो लोगो है,
0: हाँ हाँ,
1: कौन सा है आपको मालूम है कौन सी? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे।
0: जी जी,
1: बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो ये है टावर है,
0: हाँ,
1: वो उनका फिल्म का ये है
0: लोगो,
1: तो ये भी कोई सोचने लायक बात है ना।
0: जी जी, जब बिमल रॉय की बात हो और सुजाता फिल्म की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम बात करते हैं सुजाता फिल्म की। आपको अपने पिता बिमल रॉय की फिल्म जो है सुजाता के बारे में सबसे खास बात तो क्या लगती है?
1: जैसे मैंने बोला कि पिताजी तो लिटरेचर बेस्ड थे ना
0: जी,
1: हमेशा फिल्म बनाने के पहले वो सोचते थे कहाँ से लाए बंगाली लिटरेचर से। सुजाता के बारे में मैं ये बताऊंगी, एक फेस्टिवल में मैं गई थी, फॉरेन फेस्टिवल, जहाँ पे सुजाता, पिताजी का सब फिल्म से उन्होंने सुजाता को चूज किया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे यूरोप में कौन जात पात का कोई ये करेगा, लेकिन मैं एकदम बुद्धू बन गई सोच के। लोग बाहर आ रहे थे सब रोते रोते सुजाता देख के, उनको जो वो जो मदर डॉटर का जो है ना, मदर एंड डॉटर का जो ये है रिलेशनशिप है, उसको लेके वहाँ यूरोप में तो एकदम सब जो आए थे सबको सब रो रहे थे देख के। तो मुझे ये भी खुलासा मिला कि देखो ये भी हमने सोचा नहीं था पहले।
0: इस विषय को उठाने का, सुजाता फिल्म को बनाने के पीछे क्या विचार रहे होंगे आपके पिता के?
1: ये तो मैं नहीं कह सकती, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है।

0: हाँ, लेकिन चूज किया उन्होंने, जरूर अच्छा लगा होगा इसीलिए चूज किया।
1: उस समय बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी समस्या है, लेकिन उस वक्त इसको उठाना, इस विषय को, बहुत ही बोल्ड विषय था और बहुत ही निर्भीक होकर उन्होंने इस बात को आवाज दी कि किस तरह से माँ और बेटी की किरदार को जीवंत किया। और इस फिल्म में उन्होंने नूतन को चुना, इसके पीछे क्या कुछ
0: नूतन गुप्ता जी के सबसे फेवरेट एक्ट्रेस थे
1: जी।
0: नूतन की जो खास फिल्म है सुजाता और बंदिनी, तो पिताजी ने जब बंदिनी पिताजी ने सोचा बनाने का, तो नूतन को साइन करने को गए, तो नूतन ने बोला दादा मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छा लगा, लेकिन शायद मैं आपके साथ नहीं कर सकूंगी। तो पिताजी ने बोला क्यों, क्या बात है
1: जी?
0: तो बोले हम प्रेग्नेंट है, तो मैं अभी कैसे, मैं प्रेग्नेंट है तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगी। तो पिताजी ने बोला कि तब मैं नहीं बना सकूंगी बंदिनी। तो उनका हस्बैंड जो थे उन्होंने उनको उत्साह दिया, बोला विमलदा आप जरा जल्दी जल्दी शूटिंग कर लीजिए, तो फिर नूतन आपके साथ काम करेगी।
1: अरे
0: वही हुआ बात
1: जी जी,
0: शी वाज प्रेग्नेंट व्हेन शी वाज शूटिंग बंदिनी
1: जी। और उन्होंने क्या लाजवाब अभिनय किया है, अद्भुत अभिनय किया, और उसके बाद तो वो मतलब महान अभिनेत्रियों की एक लाइन में खड़ी हो गई। आप लोग गए इस फिल्म को देखने फिल्मी पर्दे पर?
0: हम लोग गए थे हॉल में देखने के लिए, मुझे याद है यहाँ पे जो ओपेरा हाउस है ना
1: जी,
0: ओपेरा हाउस में रिलीज हुई थी और सिल्वर जुबली किया था।
1: तो चलिए इस फिल्म का कोई गीत सुन लिया जाए।
0: श्योर, जरूर।
1: चलिए तो फिल्म सुजाता का एक गीत सुनते हैं।
0: हाँ।

0: बहुत सुंदर गीत। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रिंकी जी कि अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर कितने जागरूक थे, क्या उनकी फिल्मों में गीत और संगीत भी उतना ही मायने रखता था जितनी फिल्म की कहानी या फिल्म का किरदार?
1: ऑफ कोर्स जरूर, क्योंकि पिताजी ने जो पिक्चराइजेशन किया है गाने को, जैसे मैं तो मुझे तो अभी तक कोई इतना ये नहीं लगता है कि कोई दूसरा डायरेक्टर इतना ये करता है, मायने रखता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने पिताजी का गाने पिक्चराइजेशन एक स्पेशल ये था, उनका टैलेंट था।
0: उनकी पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर और हाँ ये सभी रहे
1: था। उनके पसंदीदा जो थे ना
0: संगीतकार भी
1: एस जी बर्मन
0: और सलील चौधरी साहब,
1: संगीतकार सलील चौधरी
0: एस जी बर्मन, बहुत सारी फिल्में, ज्यादातर फिल्में सलील चौधरी साहब ने उनकी हाँ। जो है संगीत में ढाली है हाँ। और एस जी बर्मन साहब का तो खैर संगीत हम सुन ही रहे हैं हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म बंदिनी का जिक्र हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब फिल्म बंदिनी उन्होंने बनाई तो आप क्या कहना चाहेंगी, फिल्म कैसे बनी और इस फिल्म की कोई शुरुआत कैसे हुई होगी, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने जब सुना कि पिताजी इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, वो एक इससे था, एक लिटरी बंगाली लिटरेचर से था
0: जी।
1: तो मैंने जाके मैं उसको रीड किया पहले।
0: अच्छा हाँ, मुझे इस कहानी को
1: तो मुझे लगा कि हाँ इससे अच्छा बढ़िया बन जाता है। ये कल्याणी का स्टोरी है, वो जो है ना जो लिटरेरी जो ये है वो लिखा है जरा संध करके, इनका नाम था जरा संध, पेन नेम हाँ? तो उन्होंने लिखा था, तो उनको जो ये स्टोरीज कलेक्शन था उसमें कल्याणी का स्टोरी पिताजी ने चूज किया था।
0: तो उस वक्त उनको ये फिल्म बनाने का विचार इसीलिए आया क्योंकि उस समय की ये समसामयिक एक कहानी थी, घटना थी। तो आपके पिता जब कलाकारों के साथ काम करते थे तो उनके काम करने की प्रक्रिया क्या रहती होगी, कलाकारों के साथ क्या संबंध रहते होंगे, किस तरह का व्यवहार रहता होगा, किस तरह से समझाना होता होगा एक डायरेक्टर के तौर पर?
1: हाँ, पिताजी कभी भी एक्टिंग नहीं दिखाते थे किसी को।
0: अच्छा,
1: जैसे राज कपूर है ना
0: हाँ।
1: राज कपूर हर भूमिका को एक्टिंग करके अपना स्टार को दिखाता है, पिताजी ने बहुत बहुत डिस्टेंस से उनको ये था। उनका एक डायलॉग राइटर था जो बहुत हिंदी एंड बंगाली जो जानता था, उनको पिताजी ने बताया था कि तुम जाके बोलो एक्ट्रेस को इस नूतन कर रहे तो इतना इतना ये करे हाँ, ये ऐसा करना है ऐसा करना है, तो वो डिस्टेंस से करते थे, वो कभी एक्टिंग नहीं दिखाता था
0: जी। तो बंदिनी फिल्म की जो कल्याणी किरदार था नूतन जी का, तो बिमल रॉय ने जिस गहराई से इसे पिरोया ये बहुत लाजवाब था।
2: हाँ, ऐसा हुआ कि गुलजार प्रोडक्शन में था, बिमल रॉय प्रोडक्शन में ऐसे असिस्टेंट था, तो एक गाने का कहीं जरूरत हो तो शैलेंद्र नहीं लिख पाए उसको, तो गुलजार ने उसको लिख दिया ओपनिंग सॉन्ग ऑफ बंदिनी मोरा गोरा अंगलाई
0: जी।
2: अच्छा, तो सुन, तो फिर मैंने पिताजी ने बोला कि तुम गाना भी लिखते हो क्या, तो उन्होंने बोला ऐसे हाँ लिखता हूँ कभी कभी दादा, तो बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम अभी वो सब जहाँ वो काम करते थे मैकेनिक गैराज, गाड़ी का गैराज में, तो बोले तुम गाड़ी वो सब छोड़ो, तुम आ जाओ हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में, तुम गाना लिखोगे। तो गुलजार का फर्स्ट गाना पिताजी हमारे प्रोडक्शन में था हाँ, वो था नॉट मोरा गोरा अंग्रेज, वो गाना का रिकॉर्डिंग उन्होंने किया प्रीफर, दैट इज हिज फर्स्ट सॉन्ग फॉर बिमल रॉय प्रोडक्शंस
0: जी।
2: हाँ, पिताजी का बोलने पर फिर वो छोड़ भी दिए, फिर एकदम से ज्वाइन कर लिए।
0: चलिए, तो बंदिनी फिल्म का गीत हम सुन लेते हैं।

0: उन्होंने जब ये चूज किया स्टोरी कल्याणी की स्टोरी बांधने के लिए, तब मैं पढ़ने को गई तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बहुत अहम बात है कि ऐसा कोई एक स्टोरी है जिसमें किसी ने जेल से आके लिखा है, उसका केस, एक केस हिस्ट्री था, ये रियल केस हिस्ट्री। हाँ, तो इसीलिए बहुत इसको बहुत माने रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस वक्त ये एक बहुत सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई थी। तो वही हम मधुमती के बारे में भी बस यही जानना चाह रहे थे कि पुनर्जन्म से संबंधित ये फिल्म थी।
0: मधुमती का अलग ही बात है, क्योंकि मधुमती का जो मधुमती लिखा गया था खाली पिताजी को प्रोडक्शन के लिए लिखा गया था, वो कोई लिटरेरी वे नहीं था।
1: जी बिल्कुल,
0: उसको क्लेम करते हैं ऋतिक घटन ने लिखा था, पता नहीं, लेकिन वो लिखा था पिताजी के लिए।
1: लेकिन वो बहुत उस जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
0: वो तो है, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, बिकॉज ऑफ ऑल द कास्टिंग, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, प्राण, बहुत बढ़िया। ये पिताजी ऐसे बनाए थे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस तभी फाइनेंशियली थोड़ा डाउन था, तो किसी ने बोलता है कि दादा आप इतना फिल्म बना रहे हैं लेकिन आप प्रोडक्शन का नहीं देख रहे, तो प्रोडक्शन ये हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आप इतना खर्चा, पिताजी खर्चे का देख नहीं थे, देख भी नहीं थे कि क्या था। तो जब उन्होंने बोला तो पिताजी ने बोला से ठीक है मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा जिसमें सब कुछ है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, गाने हैं, डांस है, सब कुछ है, विलेन, हीरो, हीरोइन,
1: वो सब था जो एक फिल्म में होना चाहिए,
0: वो जो था वो सब फिल्म में होना चाहिए। तो मधुमती उसी हिसाब से बना गया
1: जी। तो वो जो गाने पूरे इतने सुपर डुपर हिट हुए, घर घर में वो गाने बजने लगे, क्या आपके घर में भी रेडियो था उस वक्त? आप गीत संगीत तो सुन सकते थे, ये माहौल तो था घर में। तो चलिए हमारे श्रोता उन्हें गीत हम सुना देते हैं, आप कहें।

0: बहुत ही सुंदर गीत हमने सुने। और रिंकी जी, आप उनकी बड़ी पुत्री हैं, आपने पिता को बचपन से फिल्मकार के रूप में देखा है, फिल्में बनाते हुए देखा है, एक पुत्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, इस विरासत को आप किस ढंग से संभाल रही हैं आज तक?
1: मैं इस तरह से संभाल रही हूँ कि मेरे पिताजी का जो फिल्म है उसको रीइश्यू
0: जी,
1: उसको रिस्टोर करना। तो मैंने काफी एक यहाँ पे है रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमने 4 फिल्में तो अभी रिस्टोर करने के लिए दे दिया है, वो भी अभी न्यू DVD बन के आ जाएगी अभी। तो हो गया है 4 फिल्म की
0: जी
1: बात है।
0: कौन कौन सी फिल्में हैं वो?
1: मधुमती, देवदास
0: जी,
1: बंदिनी और 2 बीघे जमीन
0: जी,
1: ये 4 इधर है। एक जो रिस्टोरर है शिवेंद्र डूंगरपुर करके,
0: अच्छा,
1: तो शिवेंद्र ने इसको किया है, रिस्टोर किया है 4 फिल्में। टेक्स्ट चेयर समटाइम ये सब फिर से दोबारा आ जाएगी, DVD नया DVD आ जाएगी।
0: अच्छा,
1: सबकी हाँ
0: जी, बहुत बड़ी एक इस विरासत को आपने संभाला है और इसे जीवंत बनाए रखा है आज तक। तो रिंकी जी, आपको अपने पिता की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी?
1: ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है
0: जी।
1: मुझे तो अभी भी मधुमती देख, कभी भी मैं देखती हूँ ना मधुमती, तो मुझे लगता है कि देखते ही रहूँ
0: जी,
1: नो इतना उसका असर है और एकदम मैं ऑडियंस ही बन जाती हूँ
0: जी।
1: हाँ, ये तो मधुमती के साथ है। दो बीघे जमीन देखने को थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि ट्रेजिक है
0: जी।
1: हाँ, लेकिन जैसे ये दोनों फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है, मधुमती और दो बीघे जमीन दोनों।
0: हाँ, तभी आपको लगा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती और आगे चलकर एक बहुत बड़ी फिल्मकार बनती और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण या निर्देशन करती जैसे

0: पिता ने उस वक्त किया?
1: नहीं नहीं, ये कभी नहीं आया, बल्कि मैंने अभी तक मैंने सोचा ही नहीं था कि हम फिल्म बनाएंगे, इसीलिए इसी डर से कि मेरे को कोई कंपेयर करेगा पिताजी से।
0: अच्छा।
1: इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं बनाना है फिल्म, और जो बनी है वो एक्सीडेंटली बन गई है
0: जी। तो उन फिल्मों के बारे में आप हमें बताइए जो जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म बनाई है आपने।
1: मैंने दो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, एक है डोमेस्टिक वायलेंस पे, क्योंकि मैंने औरतों के साथ बहुत सारा काम किया एनजीओ के साथ
0: जी,
1: तो उसको बनाया है बिहाइंड क्लोज डोर्स करके, और बस ये एक फिल्म है मैं जिसके बारे में बोलना चाहूंगी
0: जी,
1: कि बिहाइंड क्लोज डोर्स है, वो वेरी बिग डॉक्यूमेंट्री, वो फेस्टिवल्स में भी गई है और इसको लेके लोग देखते भी हैं, अभी भी देखते हैं, डीवीडी में है वो।
0: इस फिल्म में जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसके बारे में आपने काफी, और आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है काफी लंबे समय तक, आप सोशल वर्कर के रूप में काम करती रही हैं, बहुत सारी किताबों का लेखन भी किया है, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपकी किताबें कौन कौन सी थी, आपने किन किन विषयों पर ये किताबें लिखी?
1: मैंने ज्यादातर किताबें लिखी और वुमेन्स इश्यूज को लेके, और दो एक पिताजी पे लिखा है, दो एक मेरे पास दो किताबें हैं, जो एक तो है मधुमति खास, मधुमति का क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसका ऊपर मैंने एक किताब लिखी है
0: जी,
1: वो पब्लिश हुआ है, और एक किताब है जिसके डोमेस्टिक वायलेंस के बोला ना मैं बिहाइंड क्लोज डोर, ये दोनों बहुत खास है।
0: इनका रिएक्शन आपको कैसा मिला जब ये किताबें दुनिया की समक्ष गई लोगों के, खासतौर से महिलाओं का?
1: बहुत अच्छा, इट इज वेरी बिग, ये लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी हो जाए इसका
0: जी कई भाषाओं में।
1: हाँ, कई भाषाओं में ट्रांसलेशन है।
0: आपको कहीं ना कहीं ये दबाव रहता होगा कि पिता से कंपेयर करेंगे, तो क्या ऐसी मानसिक स्थिति में भी आप दबाव में रही?
1: नहीं नहीं, मैं दबाव में नहीं थी, मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने कॉन्शियसली मैंने ऐसे किया कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लोग तो मुझे कंपेयर करेंगे ही ना पिताजी से, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए फिल्म में। तो एक डोमेस्टिक वायलेंस पे था, वो मुझे करना ही था, क्योंकि उसके लिए मेरे फंडिंग मिली गवर्नमेंट फंडिंग।
0: अच्छा।
1: हाँ, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, तो इसीलिए मुझे पैसा भी मिला था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बनाया, और नहीं तो मैं फिल्म के लिए मैं कुछ आग्रही नहीं थी इतना। मैं कॉन्शियसली पिताजी का जो आइडियल्स है, उनका जो ये है फिलोसफी है, उसको फॉलो करने का मैं कोशिश करती हूँ।

0: मेरा ये हमेशा कोशिश रहा कि मैं उसी को वो ये करूं
1: जी। और उसमें आप लगी हुई है आज भी, उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी आप लगातार अपनी इस यात्रा को बनाए हुए हैं। रिंकी भट्टाचार्य जी, आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्मकार बिमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों के अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बाबू संगे कथा हुआ बाबू के कथा हेले जाना पड़सी
1: आज्ञा नमस्कार
2: नमस्कार रे के आले कोई दका के कार्ड आ जों तो दो कार्ड आ छे
1: हां तो दो कार्ड आ छे घर आला से फिर मन लेट लाग ले के आसी नहीं आज्ञा
2: आज्ञा घर द्वार आ छे कि निमान आ छे केंतर आ छे
1: घर द्वार आ छे का ना रेला परा
2: घर द्वार निमान रे ले काय आज्ञा सर्वे चलला नी इटा एक्चुअली एबर मुख्यमंत्री जन आवास योजना अंत्योदय कार्ड तने देलुनी एबे निहाती आमर जो विकलांग मा मन आछत कि बाबा मन आछत कि पिला मन आछत विधवा मा मन आछत से मन के प्रथम प्रायोरिटी बोले प्रथम स्थान देबाक पड़सी
1: तार उतारे से मन पाइला कार्ड मुंसी बोलते
2: कायटा के
1: कौन तो दे कार्ड थाने मुख्यमंत्री आवास योजना मिलसी बोलला छी
2: मिलसी बोलला नि जे मात्र सब लोग एबे गोटेक माटे देत ना होय काय आस्ते आस्ते सेना सब लोग के दबाय सर्वे सर्वे तो वीडियो कॉल पचार बार तुम पंचायत जन पंचायत थाने
1: घुमर पंचायत
2: घुमर कोटपाड़ी आज सर्वे करते
3: फोन करते धन्यवाद जोर लग
1: जोर लग
0: हेले बाबू एबे तुम कहते रहला तुम जाकर तहसील बाबू तहसीलदार के कहले से जगह देखी
2: जगह तहसीलदार के लिखी पड़सी
3: ये देर बनाइला उठाई दे हेलो रेडियो के पचारू
4: हाँ उग्रसेन बलांगीर जिला में
3: हाँ उग्रसेन बाबू अरे आम आगे बसाइल आचु तुम कई पर्सन आचे पचारा भी
4: हाँ मोर एक्चुअली मोर प्रश्न रही है आज्ञा कि मु देखी आज्ञा जनकर भिन्नक्षम पिलाटे अछि 14 वर्ष
2: आज्ञा
4: এবং তাঁক মা টা আজ্ঞা তাঁর সে মধ্যে একা মানে পিলাটা সে নিজে সম্ভালুচান তো এই ক্ষেত্রে আজ্ঞা সে পিলা কোণ মিলি পারিব আজ্ঞা কিন্তু তাঁর মা কু অলরেডি তাকে মিলি পারিছি মানে তাঁর ঘরটা মা তাঁর পিলাটা পাই পারিব কি আজ্ঞা তাঁর আর্থিক পরিস্থিতি ভালো নাই
2: আজ্ঞা কেতে লোক আছত আজ্ঞা
4: তাঁর ঘরে দুইজন আছেন আজ্ঞা মা ও পিলাটা
2: আচ্ছা
4: পিলাটা মধ্যে হ্যান্ডিক্যাপ রয়েছে
2: মা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা মিললা আছে কি আজ্ঞা
4: ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ
2: ସ୍ଲାବ ଘର ତ ଆଜ୍ଞା ଛାତ ପଡ଼ିଲା ଅଛି ଛାତ
0: ଛାତ ପଡ଼ିଲା ଅଛି କି ଟିନ୍ ପଡ଼ିଲା ଅଛି
4: ବାବୁ ହଁ ହଁ ଛାତ ଛାତ ପକ୍କା ହେଇଛି
2: ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି ବୋଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେଇଟାକେ ଯଦି ବିଚାର କରିଦେବେ ତ ଅଲଗା କଥା ମାତ୍ର ଆମର ନିୟମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦୁଇ ଲୋକ ଏକା ଅଛତ ମା ରି ପୁଅ ଅଛତ ବୋଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଘରେ ଏକା ସେମଣ୍ଡର ଭାଇ ମନେକର ମାର କାଇ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପଛେ ବୋଲେ ପିଲା ଏକା ସେ ଘରେ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ହିସାବରେ ଆମର ସେଟା ଲୋକ ରେସି ଆରି ଏବେ ମନେକର ଗୋଟେ ଘରେ ଯୋଡ଼େକି ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଟିଣ ଘର ରହିଲେ ଯେ ପିଲାକେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସ୍ଲାବ କର ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କର ମିଳିଯାଇଥା
0: ବୁଝିଲା କି ବାବୁ
4: ଏମିତି
0: ଏକା ଫୋନ କରତେ ରୁଆ
3: ଧନ୍ୟବାଦ
0: ଜୁହାର ଜୁହାର ହେଲେ ବାବୁ ହେଲେ ତହସିଲଦାର ଲଗେ ଯାଇକରି ଆମେ ଲେଖିକରି ଜଣେଇବାର ଅଛେ
2: ଜଣେଇବାର ଅଛେ ଲେଖିକରି ଗୋଟେ ଦେବାର ଅଛେ ତହସିଲଦାର
0: ଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ରହିଛି କି ସେମିତି ହିସାବରେ ଦେବେ କି କେମିତି ବୋଲି
2: ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ବୋଲେ ଗାଁ ବସ୍ତି ଯେମିତି ରହିଛି ସେଠି ଆମର ଆର୍ଆଇ ବାବୁକେ ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଡର କରବାଇ ଯେ ସେ ଗାଁ ତାନେ କେମିତି ବସ୍ତି ଜାଗା ଅଛେ କି ନାଇଁ ଯଦି ବସ୍ତି ଜାଗା ଅଛେ ତାହେଲେ ଚିହ୍ନଟ କର ଚିହ୍ନଟ କଲେ ଆମେ ଏଇ ବାଟନେ ଦେଖିକିରି ତାର ଯେତିକି ଦୁଇ ସେଣ୍ଟ ଦରକାର କି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ଦରକାର ତାକେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବା ବୋଲି
3: ଏତେ ଫୋନ ଉଠାଇଲା ସେ ଉଠାଇ ଦେବ
4: हेलो
0: हेलो रेडियो के पचारू
4: जुआर लागो नानी
0: जुआर जुआर बाबू के कोइलासनी कोंतिरनी कोइलासनी
4: मो नीलांचल भाई कहूछी बलांगीर जिल्ला रो
0: आले नीलांचल बाबू केंतरे आछस
4: हां ठीक है लसम कांसे ठीक है जाछी और मो 100% 50% भलो अछि 50% ठीक है गागो ठीक है नखु नै
0: आले ओसो खाइले निको हे जाइसी एले बाबू
4: आपन आपन चतिजो सुंदर निहात निमान लागि जेबा
0: आले आले आले बबड़े

0: महिला उद्योगी माने शेष मुहूर्त को अपेक्षा न करी शीघ्र आवेदन करंतु। आजिर छोट ग्रामीण उद्योग होई पारे आसंता कालीर बड़ ब्रांड।
1: कौशल तांकर, उद्यम तांकर, एबे सफलतार परिचय मध्य तांकर।
2: सशक्त महिला समृद्ध ओडिसा।
3: प्रचार करिलु प्रायोजित कार्यक्रम इंटरप्राइज इनक्यूबेशन।
4: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
5: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
6: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
5: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
6: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
5: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।
3: सुनिले कार्यक्रम रिले कलु आकाशवाणी कटक केन्द्र आकाशवाणी जयपुर। बर्तमान शुणु आज सन्देह अधिवेशन प्रसारित होगा कार्यक्रम संपर्क सन्ध्या 6:10 प्रचार करिबु कृषि और कृषक कार्यक्रम। एथिरे विषय रही खरीफ धान फसल जत्न संपर्क सन्ध्या 6:55 जनजीवन संवाद एवं राति 7:25 शुणिबे जिला हालचाल रे रायगढ़ जिला संपर्क रे रिले करी प्रचार करिबु आकाशवाणी कटक केन्द्र रो। श्रीलंका एवं भारत मध्य रे दुबई रो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ठारे हेबा कुथिबा 2026 मसिया एशिया कप T20 क्रिकेट फाइनल मैच रो प्रत्यक्षदर्शी धारा विवरणी सुनिबे राति 7:30 रो खेल शेष हेबा पर्यंत। रिले करी प्रचार करिबु आकाशवाणी दिल्ली रो। सुनिले आज सन्ध्या अधिवेशन प्रसारित होगा कार्यक्रम संपर्क वर्तमान शुणु आसंता प्रसारित होगा कार्यक्रम संपर्क भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना प्रचार करिबु सकाळ 6:05 सकाळ 6:25 शुणिबे रामचरित मानस। आजिर अनुचिंता शुणिबे सकाळ 6:35 आदिवासी गीतर कार्यक्रम रिंजोड़ी शुणिबे सका 6:45 एथिरे परजा संप्रदायर गीत परिवेषण करिछन्ति गरिमणी परजा एवं साथी। सका 7:25 शुणिबे बर्णाली क्रमरे सुरभि कार्यक्रम सुरलहरी शुणिबे सका 8:35 शिल्पी हेले सुरेश चंद्र मिश्र एवं कुंती बेहरा। सुगम संगीत प्रचार करिबु सकाळ 8:45 शिल्पी हेले कुमार बापी तपु मिश्र कुमार सानु निवेदिता विभु किशोर एवं शैलभामा। सकाळ 9:00 गीतिधारे शुणिबे हिंदी चलचित्रर गीत सकाळ 9:30 सप्तधारे रहिछि ओडिया चलचित्रर गीत। एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शुणिबे पूर्वाह्न 10:30 हिंदी चलचित्रर गीत शुणिबे पूर्वाह्न 10:05 दिन 2:15 एवं संध्या 6:10 दिन 11:00 प्रचार करिबु आकाशवाणी लाइव लाइव फोन इन कार्यक्रम कथा आपणकर गीत अमर शुणिबे दिन 12:00।

18 रन बनाए थे सबसे ज्यादा जो उनका स्कोर था, और आज अर्धशतक की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं। और अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो करीबन 215-20

0: मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का

0: समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
2: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।

0: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
1: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
3: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या।

0: पीठ पतली कमर तिरछी नजर बाहर बका के ना दे रहा
1: जो मेरे जो मेरे जो मेरे जो मेरे
0: रिंग पटा पट रिंग रे
2: दो बदन एक कथाचित्र कंठशिल्पी आशा भोसले।

0: हाँ प्यार मोहब्बत इश्क ई सब मामला रे आपन को दिल अजब पगला में करे।
1: ओ प्रिया, जब जब तू मेरे सामने आती है मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, देख तू मेरा पागलपन, कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूँ। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूँ, बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे।